इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल।

0: बस मैं भी ऐसा ही हूँ। आप मुझसे कोई बात बताइए, मैं किसी से नहीं कहूंगा, ये प्रॉमिस है। वैसे इस तरह वाले लोग तो होते हैं, जो दोस्त आपके ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप उनसे कोई भी बात करिए एकदम निश्चिंत होकर, वो किसी से नहीं कहेंगे। और एक होते हैं जो कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और उसके बाद वो बात वो 500 और लोगों को बताते हैं। फिलहाल सुबह सवेरे 6:16 से ज्यादा 22 जुलाई की तारीख, गुड मॉर्निंग आपके साथ मस्तमौला गौरव। और ट्रस्ट यानी कि भरोसा बहुत बड़ी चीज है इस दुनिया में, इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं होती। जब कोई आपसे कुछ कहे तो उस पर भरोसा कीजिए, लेकिन कान और आंख उतने ही खुले रखिए कि जो कह रहा है वो सही है या नहीं, या जब तक खुद उसे महसूस ना कीजिए या उस पर यकीन ना आए तब तक उसको डाउट ही करते रहिए, क्योंकि ना भरोसा इस दुनिया में कांच से भी जल्दी टूटता है। चलिए जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे अंदर का वो फिलोसफर शेक्सपियर जागा और मैंने इतनी अच्छी अच्छी बातों से आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कर दी है, आगे बढ़ते हैं। 89.6 गुड गुड मॉर्निंग, इट्स हॉट।
1: हेलो,
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो, और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस,
1: कौन बोल रहा है
2: ये, और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये,
1: क्या मजाक चल रही है,
2: क्या मजाक चल रहा है। सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके, सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप, खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए, इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू
1: कुकड़ू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1, Mirchi 1, it's hot.

0: ईर्ष्या, राग, द्वेष, किसी से जलन की भावना, अपने से दूर भगाओ दोस्त।
1: मस्त मौला गौरव।
0: ऐसा बहुत लोग आपको समझाते हैं ना, लेकिन हमारे ही पापा मम्मी जब जलन की भावना रखो या कंपटीशन की भावना रखो तो हमें बार बार उकसाते हैं कि तुम्हारे नंबर राजीव से कम आए, तुम्हारे नंबर फलां से कम आए, तुम्हारे नंबर ढिकाने से कम आए। जिस दिन ये जलन की भावना हमारे अंदर पैदा की गई वो यहीं से तो आई थी। लेकिन फिलहाल बस इतने कहेंगे, जिंदगी में कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है दोस्त। ऑफिस में हो, स्कूल में हो, या फिर खेल के जीवन से लेकर जिंदगी के हर पहलू में कॉम्पिटिशन के बगैर आप बिना डायरेक्शन वाले ही खिलाड़ी होते हैं। इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है। आप अपने ऑफिस में भी कंपटीशन जरूर रखिए। कौन सा एम्प्लॉई सबसे अच्छा काम कर रहा है उससे थोड़ा ही कम करिए, या फिर कौन सा सबसे कम काम कर रहा है मेरी तरह उसकी तरह काम करिए। इससे क्या होगा, कंपटीशन बना रहेगा तो आप भी ज्यादा छुट्टी से छुट्टी लेना चाहेंगे, कैसे कम काम करें उससे सीख पाएंगे। इस उम्मीद में कि ऐसी बातें कर आपके दिल को थोड़ा बहला देता हूं और अपने को भी आगे बढ़ा लेता हूं। बस मौला गौरव गुड मॉर्निंग कर रहा है आप सबको, एंड इतना ही कह रहा है कि अगर आपकी गुड मॉर्निंग हो गई है चाय के प्याले के साथ, गाड़ी में आप मुझे सुनते हुए कहीं जा रहे हैं, प्लीज एक हेलो भेज दीजिए 5000 96 पर। आपके नाम के साथ आपका संदेश लोगों तक पहुंचा देगा ये मस्त मौला गौरव। फिलहाल रश्मित कौर जिगर सरैया, अब तुम लोगों ने गाना गाया तो हम सुनाएंगे। दिलबर की आंखों की बात है, हैं? नंबर तो नहीं चढ़ा है चश्मे का। मिर्ची
2: मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: जी नदियों पार सजन दा ठाना और गाने के बाद आ जाता है वो जिसका यही है ठिकाना। सुबह सवेरे गुडी गुड मॉर्निंग, आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों को दिल से शुक्रिया थैंक यू कहना चाहूंगा जो मुझसे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग मेलोडी किंग आरजे गौरव। अरे नहीं भाई, हम तो मेलोनी वाले किंग है फिलहाल इन सबके बीच। डेली डोज ऑफ हैप्पीनेस का है मेरे शो को, दिल से शुक्रिया मेरे भाई, आपको मैंने पैसे भी नहीं दिए ना ट्रॉफी खिलाई तो भी आप इतना अच्छा लिख रहे हैं। वैसे आज की तारीख की बात करें तो यस 22nd of July 1959 में एक फिल्म आई जिसको वर्स्ट मूवी एवर का खिताब मिला। यस, एड वुड्स की कल्ट क्लासिक कहते से प्लान 9 फ्रॉम आउटर स्पेस। अगर कभी बहुत खराब पिक्चर देखने का मन करे तो आप इसी के बारे में जा सकते हैं। वैसे अगर बात करें तो यस, हम आपको बता दें इंडिया का लूनर मिशन चंद्रयान 2 आज सतीश धवन स्पेस सेंटर से निकला था श्रीहरिकोटा से कि दुनिया में हम चौथे देश बनेंगे जो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा मून में, और फिर जाकर हमारा ये प्रयास सफल हुआ था। आज ही का वो दिन था जब ये चंद्रयान ने उड़ान भरी थी, चांद के उस पार उतरने की कोशिश की थी। फिलहाल जिंदगी में कोशिश हमेशा करनी चाहिए क्योंकि जिसने कोशिश नहीं की वो फिर ना शिकायत का हकदार है ना उसकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए। हर बार कोशिश कीजिए, मैंने भी कोशिश करी कि मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाऊं, बहुत कोशिश करी, नहीं हो पाया वो बात अलग है, मम्मी के जो थप्पड़ थे वो गालों में पड़े, पर हमेशा याद रहता है कि फर्स्ट डिवीजन नहीं आए थे किसी को भी बता देते। 89.6 मिर्ची 1 गुड मॉर्निंग, अपने मैसेजेस भेजते रहिए मिर्ची थॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: सुबह सवेरे अगर आप पोहे जलेबी वाले हैं, कचौड़ी जलेबी वाले, तो एक गाना आपके लिए।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
8: FM मिर्ची।

0: अभी कुछ और दिनों तक गर्मी से राहत के दूर दूर तक चांसेस नहीं है। गुरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मिर्ची मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। और मौसम की बात करें तो यहाँ तो अभी भी गर्मी की ही तरावट है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट
0: बात करें तो राइट नाउ का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा है। आज दिन का मैक्सिमम अगेन इट विल बी 45 और मिनिमम विल कम अराउंड 33। बड़ी बात यह है कि 45 से 33 के बीच में

0: आवर की रफ्तार से चलती हुई। ह्यूमिडिटी का परसेंटेज राइट नाउ 28 है, पर आज ये ऊपर जा सकता है। वेल, हवाओं की रफ्तार की बात करें तो ये 12-13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलनी है। एकदम घबराइए मत, पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए एंड मिर्ची सुनते रहिए। कानों की तरावट तो हम बनाए रखते हैं। मिर्ची इट्स हॉट।
1: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100-0813.

0: मजा करती थी स्टूडियो में।
1: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची ये थॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची ये थॉट।
3: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
4: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
5: कैसे रुक सकता है?
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगैन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और

0: मिर्ची हेल्प लाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
0: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings.
1: Mirchi Mornings. It's hot.
2: 89.6.
1: Mirchi One. It's hot.

0: कहर कुड़े गुरु रंधावा के आवाज में गाना भी एकदम जहर है। लेकिन फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम सुबह के 7:03 के करीब का होने आ चुका है।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और इन सब के बीच मस्त मौला गौरव आपके साथ है। एंड एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट या यू कह ले एक तरह से हमसे कुछ अर्ज किया, एडवाइस किया है रेसिडेंट्स को कि आप जब अपने घर से निकल रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट किसने की है, ये की है कहरामा ने हमारे और आपसे। बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट है ये।
2: #974974 the most trending local news of the day।
0: Yes, Qatar General Electricity and Water Corporation कहरामा ने हम सबसे रिक्वेस्ट की है, एडवाइस किया कि जब हम अपने घर से निकल रहे होते हैं ना, तो हम उन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डिस्कनेक्ट करके स्विच को स्विच ऑफ कर दें जिनकी जरूरत नहीं है। Yes, अगर आप इसी तरह से अपने स्विचेस में उन अप्लायंसेस को लगाए रहेंगे, भले ही आप उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं, बटन नहीं भी ऑन है, कभी कभी कंजम्पशन बढ़ता है और 10% स्टैंड बाय पावर जो है वो एवरेज बिल में आ जाता है। स्टैंड बाय पावर जहां पर आपको तो लग रहा है कि स्विच में लगा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन करंट दौड़ रहा है ऐसा ये मानते हैं। एंड इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये एनर्जी सेविंग प्रैक्टिसेस ही हमें फ्यूचर में एनर्जी बचाने का काम करती रहेगी। एंड प्लीज आप इस चीज को समझिए कि अगर हम किसी भी चीज को पावर सप्लाई उसमें भले ही स्विच ऑफ है, लेकिन अगर हम एनर्जी कंजम्पशन को बचाना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैंने अक्सर घरों में देखा है, इनफैक्ट मेरे घर में भी कई बार होता है कि जो मोबाइल के चार्जर्स होते हैं ना, वो हम स्विच ऑन करके मोबाइल तो लगा देते हैं, फिर धीरे से टावर तार को अपने मोबाइल कनेक्शन से हटा देते हैं, लेकिन हम उसे स्विच ऑफ करना भूल जाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप डूइंग दिस गुड हैबिट, क्योंकि मुझे लगता है इससे आपकी तो सेविंग होगी होगी, आप फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर जाएंगे। 89.6 मिर्ची वन पर अगली बार हम सवाल के साथ आएंगे, जरा बॉलीवुड का आपका कनेक्शन जोड़ के देखेंगे। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka.
1: Milci, burka. हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
1: हाँ बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से 1 बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
5: Enjoy 0% making charges on select tournaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
8: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM Mirchi 1.
12: It's hot. It is

0: तुम्हारे ही रहेंगे हम, वरुण जैन, शिल्पा राव, सचिन जिगर की आवाज में गाना आपके कानों में हमने पहुंचाया है। मस्त मौला गौरव आपके साथ है। तो बातें बातों में अब सवाल की बारी है। वैसे तो शाम को खेलते हैं लेकिन आज सुबह खेलेंगे। दो आवाजें आपके कानों में, आप किसी एक को भी गेस कर लेंगे तो हम मान जाएंगे कि आपका दिमाग अलग शातिर है।
1: आपको कैसे लड़के पसंद है?
2: मुझे शक्ल वक्ल से मतलब नहीं,
1: जरा भी नहीं,
2: बिल्कुल भी नहीं।
1: जैसे तू बोलती थी मेरा है मेरा ही है।
2: हाँ बट हाँ। क्या होता है ना भाई, वो हैंडसम भी था ना।
1: हाँ तो वेरी गुड लुकिंग।
0: 5000196 पर आपको बताना है कि हाँ ये दो महिलाएं कौन हैं जो किसी के बारे में चर्चा कर रही हैं। हाँ जी, एक बार फिर ध्यान से सुनिए और बताइए ये कौन सी दो लेडीज हैं।
1: आपको कैसे लड़के पसंद है?
2: मुझे शक्ल वक्ल से मतलब नहीं,
1: जरा भी नहीं,
2: बिल्कुल भी नहीं।
1: जैसे तू बोलती थी मेरा है मेरा ही है।
2: हाँ बट हाँ। क्या होता है ना भाई, वो हैंडसम भी था ना।
1: हाँ तो वेरी गुड लुकिंग।
0: चलिए 5000196 पर मस्मोल गौरव आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। वॉइस नोट पर अपना जवाब कि गौरव ये जो तो आप आवाज सुना रहे हो ना वो तो फला फला की है। अगर पहचान लिया है तो इस ढिमकाने को फटाफट से फोन कर दीजिए 5000196 पर। वॉइस नोट में अपना जवाब भेजकर, संदेश भेजकर बताइए कि आपके कान तेज है और आपने पहचान लिया है।
1: आपको कैसे लड़के पसंद है?
2: मुझे शक्ल वक्ल से मतलब नहीं,
1: जरा भी नहीं,
2: बिल्कुल भी नहीं।
1: जैसे तू बोलती थी मेरा है मेरा ही है।
2: हाँ बट हाँ। क्या होता है ना भाई, वो हैंडसम भी था ना।
1: हाँ तो वेरी गुड लुकिंग।
0: 5000196 पर मस्त बोलो गौरव सुबह सवेरे इंतजार कर रहा है। गुड मॉर्निंग मिर्ची, इट्स हॉट
3: मिर्ची मॉर्निंग। Brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: Going home? Make it rewarding with Kalyan Jewelers.
6: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
7: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
8: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
7: योर स्पेशल ऑफर?
8: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
7: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
8: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
7: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
9: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
10: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
11: बहुत कुछ होगा।
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: क्या आवाज है भाई अरिजीत बाबू, आपकी आवाज बहुत जल्दी किसी को मिलती नहीं है।
1: मस्त मौला गौरव।
0: मतलब गाना कितना भी कठिन हो बड़ी आसानी से गा जाते हैं, यही तो इनकी खूबसूरती है। फिलहाल हमारी भी खूबसूरती है, सुबह सवेरे आते हैं तो सवाल पूछते हैं। और सवाल में आज मैंने पूछा है ये दो लेडीज कौन सी हैं जो पंचायतें कर रही हैं।
2: आपको कैसे लड़के पसंद हैं?
3: मुझे शक्ल वक्ल से मतलब नहीं,
2: जरा भी नहीं,
3: बिल्कुल भी नहीं।
2: जैसे तू बोलती थी मेरा है मेरा ही है।
3: हाँ बट हाँ। क्या होता है ना भाई, वो हैंडसम भी था ना।
2: हाँ तो वेरी गुड लुकिंग
0: भाई, वो हैंडसम भी था ना। तो बताओ ये किसकी आवाजें हैं?
4: हाय गुड मॉर्निंग, द सॉन्ग व्हिच वी हर्ड इज फराह खान एंड निकी, दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ द वॉइस शुड बी।
5: Good morning, Shehnaz Gill.
6: Hey Gaurav, good morning. Hi. The conversation which you just played on radio is between Farah Khan and Shehnaz Gill. Thank you. Okay.
7: Good morning, Gaurav Kriti here. Those two ladies in the conversation are Farah Khan and Shehnaz Gill.
5: Okay. Good morning, Gaurav ji.
0: Ji ji.
5: Iska jawab hai, ek to hai Shehnaz Gill, dusri Farah Khan.
0: Okay.
6: Good morning, the wife, the two lady. One Farah Khan, the second one Shehnaz.
8: गुड मॉर्निंग सर, ये आवाज है एक तो फराह खान है, पता नहीं मुझे, एक फराह खान है राजा
0: मशेख।
9: गुड मॉर्निंग गौरव जी, इट्स अब्दुल रहमान विद यू, द वॉइस ऑफ टू लेडीज, वन इज शहनाज गिल एंड द अदर वन इज फराह।
0: यार मतलब कमाल के लोग हैं यार, सही बात है। फराह खान में कुछ लोग जरूर कंफ्यूज हुए लेकिन शहनाज गिल को तो ऑलमोस्ट सबने पहचान लिया है जी। वैसे मस्त मौला गौरव इतना ही कहेगा कि भाई देखो ये ही हम लोगों की खूबसूरती है, अगर दो औरतें पंचायत करें तो हम लड़के भी समझ जाते हैं कि कौन सी दो आवाजें हैं। 89.6 पर गुरी गुड मॉर्निंग, आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस मिलते रहे, ये अच्छा है और भेजते रहिए। इट्स हॉट
10: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आप कितने भी बड़े मिलेनियर हो, कितना आम खरीदा आपने हमारे कतर में। यस भाई, जबरदस्त तरीके से इस बार मैंगो को हमने आम को खास बनाया है और इसमें एक लंबा लिस्ट जो है हमने लोगों तक पहुंचाया है।
1: #974
0: कह सकते हैं 350 टन से भी ज्यादा आम हम कतर में खा गए। इंडिया पाकिस्तान मैंगो एग्जीबिशन लगा, थर्ड हम्बा पाकिस्तानी मैंगो एग्जीबिशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 174 टन आम बिका और लगभग 85,000 लोग उन 10 दिनों में जाकर वहां आम के स्वाद को चख पाए। हर बार ईस्टर्न स्क्वायर सूख वाकिफ में ये महीना ही होता है जुलाई जून वाला जहां पर हम आम खाने जाते हैं, क्योंकि आम को खास बनाने के लिए हमें उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। तो आम खा खा के अब कतर का दिल जो है लगता है थोड़ा तो भर चुका है एंड बोल सकते हैं कि अब मैंगो

भी कन्वर्सेशन हो रही हो किसी भी गैदरिंग में, या आप जो यू नो वीकेंड्स में फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, घूम फिर के वो खाने के ऊपर ही आ जाती है, और यही खूबसूरती है कि हम बस खाने के लिए जिंदा है दोस्त। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैले सर्विस दे रहा है यार वो।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी

0: हाँ जी, और हमारी इस असल जिंदगी में हमारा बंधु, हमारा सखा एक ही है, पैसा।
1: मस्त मौला गौरव।
0: हाँ भाई, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर फिलहाल बात करें तो समय पर पहुंचेंगे तो पैसे भी कमाएंगे। यही तो कहते हैं, काम के लिए आपको वक्त पे पहुंचना जरूरी है। 8:04 के करीब का टाइम होने आ रहा है।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: चलिए जी, घड़ी की सुई टिक टिक बढ़ती हुई मिर्ची क्लॉक में, एंड गुड मॉर्निंग, मस्त मौला गौरव आपके साथ है। सुबह सवेरे वैसे तो मेरी सैलरी जो है 10-12 तारीख को नदारद हो जाती है, लेकिन आपके पास बची है तो भेज दो, रेट्स अच्छे हैं। आई पे एक्सचेंज रेट में राइट नाउ 1 कचरियाल के बदले मिलने वाली भारतीय मुद्रा, बोले तो इंडियन रुपीज 26.36 रुपए मिलने, 26.36 INR। वहीं अगर इसके बाद हम पाकिस्तानी श्रीलंकन रुपीज की बात करें तो 1 कचरियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 92.20, पाकिस्तान रुपीज जनाब 1 कचरियाल के बदले 76.32, 76.32 पाकिस्तान रुपीज। तपाईँको नेपाल रुपीज का रेट छ दाजु 1 कचरियाल के बदले बहिनी 42.16 का भल छ रेट दाई। हाँ जी हजुर, 42.16 नेपाली रुपीस का रेट छ दाजु। अगर इसके बाद हम बांधु बांग्लादेशी टाका बात करके दादा, 1 कतरियाल के बदले 33.93, तो 33.93 बाहरी जी के पैसा भेजो। हाँ जी, रेट यही अच्छे। तो मस्त मौला गौरव आपके साथ है, और संजू राठौड़ अब मराठी गाने का हिंदी वर्जन मिर्ची पर लेके आए। वो गाना है साड़ी, ये है बैंगल। मतलब भाई ना, लड़कियों को यूज होने वाले श्रृंगार में आने वाली चीजों पे ही गाने बना बना के हिट हो गया।

0: Mirchi. Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. Na virtuala burka.
1: Mirchi, burka. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या
2: बात है सर. I'm so sorry, पूरा बता दिए.
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: पता सर, आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे ही कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
4: अभी कॉल करें 3100813.
5: Why go outside to see a doctor when health care can come to you?
4: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
6: Ja Simran, ja jeere apni zindagi. Ja beta, ja.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

लेकिन हम चाहते हैं आप हमारी इंडियन टीम को छोड़ के जाएं, गंभीर साहब। मतलब आप एज अ प्लेयर सुपर डुपर स्टार थे, इसमें कोई डाउट नहीं है आपकी, क्या यू नो कोचिंग के अंडर में हमने 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन अभी चल रही है हमें लगता है कि वो टाइम आ गया है कि अब आपको हमारी इंडियन टीम को छोड़ देना चाहिए हमारे हाल पे। बाकी हम देख लेंगे हम किससे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम आयरलैंड इंग्लैंड में सीरीज हारे हैं, वनडे हो T20 हो, अब नहीं लगता कि आपसे गंभीरता से कुछ भी हो पाएगा। और इससे पहले कि हमारी टीम इंडिया की हालत और ऐसे ही ICU जैसी गंभीर हो जाए, राइट टाइम है, क्योंकि आप अगर अभी स्टेप डाउन करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 महीने रहेंगे, जब अगले साल साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होने वाला है वनडे क्रिकेट का, तो हमारी टीम इंडिया को कोई नया कोच मिल पाएगा। हैं जी, इसी उम्मीद में कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, आगे बढ़ते हैं लेकिन सवाल जवाब के साथ। सवाल यही है कि जब पिछली बार साल 2003 में यहां वनडे वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडियन टीम ने किस पोजीशन पर फिनिश किया था। बहुत कुछ याद आ जाता है जब हम उस पोजीशन की बात करते हैं। 5001896 पर आपको बताना है कि इससे पहले जब साउथ अफ्रीका में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था तो हम किस पोजीशन पर आए थे। 5001896 वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजिए अगर आप मेरे सवाल को समझ पा रहे हैं। आई एम श्योर बहुत ही ईजी है। इंडियन टीम ने साल 2003 में जब साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ तो किस जगह फिनिश किया था टूर्नामेंट। 5001896 पर मस्त मोलोग और इंतजार करता हुआ आपके जवाब का। मिर्ची इट्स हॉट।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: लगे।
1: बादशाह अरिजीत सिंह की आवाज में सोलमेट ये गाना सुनाया किसने?
2: मस्त मौला गौरव।
1: देखिए भाई, यूं तो जिंदगी में सबको अपना सपनों वाला सोलमेट नहीं मिलता, लेकिन अगर आप जिंदगी में तारीख पर तारीख को जानना चाहते हैं तो एक मौका मिलता है। यस, आप जिंदगी में बहुत सारे अनुभवों को लेकर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके लाइफ में होते हैं। डेट को लेकर, किसी डेट पर आपके दांत खट्टे हो जाते हैं, कहीं आपको डांट पड़ जाती है, कहीं आप पैसे पे करते हैं, लेकिन एक डेट जहां पर आप जाएंगे और डेट्स खाएंगे तो आपका मुंह मीठा ही होगा, वो हमारे कतर में लगने जा रहा है। खजूर की, जो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं अमा गल्फ से लेकर आओ, कतर वाला लेकर आओ, और ऐसी ही नाना प्रकार की वैरायटी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं यस, ढेर सारी वैरायटी जो कि हमारे कतर के लोकली लोकल ग्रोन है, यहाँ के डेट फार्म्स में जहाँ होता है, वो वाली आने वाली है। एंड हमारे और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, शाम 4 से रात 9 बजे तक, संडे टू थर्सडे, एंड ऑन वीकेंड्स इट विल बी टिल 10 PM। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कतर का अपना एक जलवा है डेट्स के अलग अलग वेराइटीज़ में, और उन्हीं में से मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने अनाउंस कर दिया है कि लोकल डेट फेस्टिवल जो कि रुताब डेट्स की वेराइटीज़ लेकर आ रहा है, तैयार हो जाइए हमारे कतर के अलग अलग फार्म्स के डेट के स्वाद चखने के लिए, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारे कतर के बहुत सारे फार्म से होकर आएगा और हमारे मुंह को और मीठा कराएगा। तो हबीबी, अगर आप अभी तक घर नहीं गए हैं और सोच रहे हैं कि अगस्त के महीने में छोटी सी एक छुट्टी मार के आएं, तो ये डेट फेस्टिवल आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है वहाँ गिफ्ट ले जाने के लिए। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव यही कहेगा कि मैं आज तक ऐसी किसी डेट पर नहीं गया जिसमें मुझे खुद से पैसे देने पड़े, यहाँ भी फ्री में चक्के आएंगे। इट्स हॉट
3: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। देखो

0: Feelings back.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
7: Enjoy 0% making charges on select ornaments. Visit Kalyan Jewelers today. Conditions apply.
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान सबके गाने आएंगे दीदी।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: टूटा तो टूटा भैया, हमारा 2003 में सपना टूटा था।
1: मस्त मौला गौरव।
0: साउथ अफ्रीका में हो रहा था वर्ल्ड कप और इंडिया का सपना टूटा था। यस, हम उस वर्ल्ड कप में ये मानकर चल रहे थे कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत कर ही लौटेगा और ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत को खत्म करेगा, क्योंकि वो 99 के बाद लगातार दूसरा वर्ल्ड कप जीतने जा रहे थे। हाँ जी, लगातार दूसरा, तो उसके पहले भी जीत चुके थे। ऐसे में हमें लगा था कि टीम इंडिया उनका घमंड तोड़ेगी, पर फाइनल्स में सब कुछ बदल गया था दोस्त। मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या बता पाएंगे वो वर्ल्ड कप जब हम 2003 के फाइनल्स तक पहुंचे थे, उस वर्ल्ड कप में हमारे इंडियन टीम का कैप्टन कौन हुआ करता था? क्योंकि जिस तरह से हम अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, वाकई में कौन कैप्टन होगा हमें अभी लग रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हम कि कौन आने वाला है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली आयरलैंड में सीरीज हारी है। वैसे आज से, इनफैक्ट कल से हम जिम्बाब्वे में भी खेलने जा रहे हैं और पहला T20 मैच कल होना है। ऐसे में मुझे घबराहट हो रही है यहाँ पे क्या होगा। हैं जी, मस्त मौला गौरव इतने कहेगा आयरलैंड इंग्लैंड में तो हार के कम से कम जिम्बाब्वे से ये मत करना, वरना दिल जो है वो टूट जाएगा दोस्त। फिलहाल सवाल की बारी आई है तो जरूर पूछ रहा हूँ कि बताइए 2003 वर्ल्ड कप में जो वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ, उसमें इंडियन टीम का कैप्टन कौन था? 5000 1896 5000 1896 पर आपको अपना जवाब वॉइस नोट भेजना है। गौरव मैं ये बोल रहा हूँ और जवाब है ये फलां कैप्टन थे। 5000 1896 पर 2003 वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जो हुआ, उसमें इंडियन टीम का क्रिकेट कैप्टन कौन था जो इंडियन टीम फाइनल से पहुंची थी? मिर्ची थॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम where you'll never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
3: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
4: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: Hello, shops. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine baba ji se advice li to kehte hain,
7: office ke toilet mein toilet paper white nahi yellow lagao, profit aayega.
6: Relative se advice lo to kehte hain,
8: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
6: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
9: Bhai kya kar raha tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
10: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: आशा भोसले एंड आदि बमन के साथ एक बार फिर से रेबल ने इस गाने का एकदम नया ट्विस्ट दिया है, और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छा हो जब इंडिया अगले साल 50 ओवर बोले तो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में उतरे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हमारी इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए। वैसे इन सब के बीच मैंने एक सवाल आज किया हुआ है, क्या आप बता पाएंगे साल 2003 में जब इंडिया वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा तो उस वक्त इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? 5000018 96 5000018 96 पर 2003 वनडे वर्ल्ड कप इंडियन टीम फाइनल में पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरीके से हारी भी थी, लेकिन उस वक्त इंडियन टीम का कैप्टन कौन था, ये आज का सवाल है। 5000018 96 पर अपना जवाब भेजते रहिए, एंड अब से थोड़ी देर में हम सही जवाब वाले की आवाज भी यहाँ लाएंगे। मिर्ची पर इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: मुझे लंबे नाखून पसंद है पर मैं हमेशा उन्हें चबा लेती हूँ, क्या करूँ?
2: अरे चबा के खाना तो अच्छी बात है, कीप इट अप, और चाहिए तो ब्यूटी पार्लर चली जा, बहुत वैरायटी है उनके पास।
3: खोपड़ी तोड़।

0: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: 89.6 मिर्ची वन पर अब सुबह सवेरे 9:04 के करीब आ चुके हैं आपके साथ है और इन सब के बीच मस्त मौला गौरव आजकल गुड मॉर्निंग शो करके आ रहा है भैया। अच्छा अच्छा फीलिंग आता है मिर्ची मॉर्निंग से आपसे बातें कर, लेकिन अच्छी फीलिंग तो तब आती है जब गवर्नमेंट सेंटर्स अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं और लगातार कतर की ग्रोथ में अपना एक तरह से रोल प्ले करते हैं, और ऐसी गवर्नमेंट एंटिटीज ने किया है कतर इंटीग्रेटेड सर्विस सेंटर्स में, जहां पर नोटेबल अचीवमेंट सामने आए हैं। यस, 46,786 सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून 2026, ये लगातार पूरी की गई है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी की अगर बात की जाए, जो कि थर्ड नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को एकदम सपोर्ट करता है, एंड डेटा रिलीज किया है सिविल सर्विसेज एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो ने, जिन्होंने कहा है अपने सोशल मीडिया के जरिए कि यस, हम लगातार एक एफिशिएंट गवर्नेंस कर रहे हैं एंड मिनिस्ट्रीज का काम करना, एजेंसीज का काम करना, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो या फिर कतर में जो और भी डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करना, ये सब कुछ हो रहा है एंड सब कुछ राइट डायरेक्शन में हो रहा है। विजन 2030 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखते हो रहा है, और एक मुल्क की तरक्की में ना उसमें काम करने वाले लोगों का सबसे बड़ा रोल होता है, और इसलिए सारे मिनिस्ट्रीज के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। यस, मैं मानता हूं आपका मुल्क के साइज से कुछ नहीं होता, आप कितना बड़ा जिगरा रखते हैं उससे होता है, और कतर ने पूरी दुनिया में प्रूव किया है वो क्यों है इतने खास, क्यों है सबसे अलग। एंड विश्वास कीजिए, जिस तरह से कतर तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बनकर खड़ा है, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया का हर बड़ा इवेंट तो यहाँ हो ही रहा है, ओलंपिक भी यही होगा। दोस्तों इंतजार रहिए, आपके कान में ये खुशखबरी किसी भी पल कभी भी आएगी, बस थोड़ा और इंतजार, सबर हबीबी सबर। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट
2: मिर्ची, फ्रेश माल,
3: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर, वे जुनून।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidbala burga. Milci burga.
1: Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: यार
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: गोइंग होम, मेक इट रिवॉर्डिंग विद कल्याण ज्वेलर्स।
5: एंजॉय 0% मेकिंग चार्जेस ऑन सेलेक्ट टूर्नामेंट्स। विजिट कल्याण ज्वेलर्स टुडे, कंडीशंस अप्लाई।
6: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिल्खा सिंह, तुलसी कुमार रिक्रिएटेड वर्जन ऑफ पुराना गाना, गोविंदा रवि ने टंडन और यहाँ बदल कर आ गए थे ये गाने में मिल्खा सिंह तुलसी कुमार। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा है सवाल, सुबह सवेरे सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग, क्योंकि भाई धीरे धीरे धीरे धीरे अब हम आखिरी घंटे में भी बढ़ रहे हैं, वो भी लास्ट हाफ एन आवर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैंने एक सवाल किया था कि गौतम गंभीर की कोचिंग पे अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इंडियन टीम अगर अगले साल 50 ओवर वर्ल्ड कप में जा रही है तो क्या गौतम गंभीर को ही कोच होना चाहिए? खैर चलिए, वो तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गौतम गंभीर साहब पर गंभीर कार्रवाई का टाइम आ गया है। आयरलैंड इंग्लैंड सब हार रहे हैं यार, और कल से जिम्बाब्वे शुरू होने जा रहा है। अगर ये हारे तो पक्का है कि उनकी छुट्टी तय है। लेकिन सबके बीच सवाल पूछा था 2003 में जब वनडे वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो टीम इंडिया का कैप्टन कौन था? और कुछ लोग हैं जिनके जख्म अभी भी ताजा है, उनको याद है।
1: गुड मॉर्निंग गौरव, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 2003 के मैच में इंडियन टीम के कैप्टन सौरव गांगुली थे।
2: ओके, लास्ट टाइम इन 2010 व्हेन स्पेन वन द फीफा वर्ल्ड कप, इट वाज होस्टेड इन साउथ अफ्रीका।
0: अरे फीफा वर्ल्ड कप नहीं, ये गलत लग रहा, कल वाला मामला आज भी कहीं से आ गया दोस्तों। नहीं, असलियत के आंसर्स मैंने लिए हैं यार, ऐसे कैसे गड़बड़ मैं सुना दूंगा। नहीं, ये लीजिए एक और आंसर आ गया है, इन्होंने क्या बोला आइए सुने।
3: Good morning, Radio Mirchi. The answer is Sourav Ganguly.
0: Yes, the answer is Sourav Ganguly. क्योंकि yes, Ganguly दादा ही उस वक्त इंडियन टीम के असल कप्तान थे, जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि टीम इंडिया वो वर्ल्ड कप जीते। लेकिन दोस्तों, वो वर्ल्ड कप हम जीत नहीं पाए और मन थोड़ा सा खट्टा हो गया था। पर कोई नहीं, हर बार जरूरी नहीं कि जो आप सोचे वो हो जाए और आप जीत के ही आए। सौरव गांगुली उस टाइम में कैप्टन थे इंडियन टीम के। एक और जवाब है।
1: गुड मॉर्निंग गौरव,
0: गुड मॉर्निंग।
1: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के 2003 के मैच में इंडियन टीम के कैप्टन सौरव गांगुली थे।
0: सौरव गांगुली यार, लोगों को याद है क्योंकि दादा की कैप्टनसी ऐसी थी, दादा एकदम कमाल करते थे। एक और जवाब है। सौरभ गांगुली यार, मतलब लोगों को याद है, वो शानदार वर्ल्ड कप था। काश हम फाइनल जीत गए होते तो 20 सालों के ही गैप पे हमें ये वर्ल्ड कप मिला होता, लेकिन 28 साल लगे 2011 में जीते। मस्मोलो गौरव आपके साथ, फिलहाल तो अगला गाना सुना के सुनने का आशीष कौर दिल जीतने जा रहे हैं, एनर्जी से भरपूर। इट्स
4: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका

अरे जबरा फैन हो गया और मैं भी फैन हो जाता हूँ हर इंसान का जो दूसरों के लिए दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है। इस मतलब ही दुनिया में सब अपने बारे में सोचते हैं, वही अच्छा है जो दूसरों के लिए भी सोचता है। वेल अगर बात करें तो हमारे कतर में हमारी हेल्थ के लिए जरूर सोचता है PHCC, और इसीलिए उन्होंने अपना समर प्रोग्राम केयर समर शुरुआत करने की बात कही है। यस, अगस्त 2026, जहां पर 12 से 18 साल के पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को जो कतर में है अक्रॉस 6 हेल्थ सेंटर्स मिलने वाली है एक ट्रेनिंग। यस, ये फ्री फील्ड ट्रेनिंग होगी जहां पर बच्चों को बहुत कुछ समझाया जाएगा। PHCC ने 3 हेल्थ सेंटर फॉर मेल स्टूडेंट अलसाद अलवाजबा उम सलाल एंड 3 हेल्थ सेंटर फॉर फीमेल स्टूडेंट अल्तुमामा मोइदर एंड लबाइब यहां पर लगाने की बात कही है। और ये बेसिकली ये हेल्थ प्रोफेशन की तरफ उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए उसकी भी एक शुरुआत होगी। केयर समर प्रोग्राम का एक मकसद है कम्युनिटी को एंगेज करना एंड समर ब्रेक में बच्चे कुछ सही चीजें सीख पाए, स्टूडेंट्स के अंदर स्किल आए, किसी चीज की चीजें बढ़े एंड एनर्जी उनका पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ बढ़े उसका ध्यान में रखते हुए ये वाला काम करने की तैयारी कर दी गई है PHCC का ये जो प्रोग्राम है। यस, इट इज कॉल्ड एज केयर समर। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ समर नहीं सर, पूरे साल स्कूल्स में होना चाहिए। बच्चों को ना मंथली एक बार तो बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो हेल्थ रिलेटेड वो अपने घर में भी आके बताएं, क्योंकि ना हम लोग अब हो गए बड़े, हम लोगों को बच्चों की बातें जब वो प्यार से समझाते तो समझ में आती है। भाई ये एकदम नन्हे नन्हे जो मुन्ने बच्चे ना ये आजकल सुपर स्मार्ट है हमसे भी कई गुना ज़्यादा, तो इनकी बातों को जब ये प्यार से रखेंगे ना तो हम मान जाएंगे। बस हमारी एक बात मान जाए और वो बात है कि मोबाइल मत यूज करो यार, तुम लोग हर वक्त सिर्फ और सिर्फ मोबाइल चाहिए होता है तुम लोगों को। 89.6 मिर्ची 1 मत दो इनको, इट्स हॉट।

Do you know Diljit Dosanjh ke awaaz mein? I know garmi bahut hai. Mast mola gaurav. And do you know maximum is 44 and 34 is low? Yes, aaj din ka maximum temperature jahan 44 hoga wahi minimum around 34. Badi baat ye hai ki bhai in sab ke beech mein hawaon ki raftaar jab tak chalti hai mujhe lagta hai theek rehta hai, lekin jaise humidity hum par kabza karti hai, by god matlab chalna dubar hai dost. बस इंतजार कीजिए, कुछ ही दिनों में लगातार वैसे ही मौसम मिलेगा, लेकिन उसके बाद हर दिन के साथ ये उम्मीद कि अगस्त आएगा, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर तक तो मौसम ठीक हो जाएगा, और फिर नवंबर आते आते तक दिसंबर में ठीक ही हो जाता है. 89.6 मिर्ची वन पर मस्मोलो गौरव फिलहाल लेगा अलविदा, कल वीकेंड वाली वाइब लेकर लौटेगा. थर्सडे की अपनी एनर्जी अलग होती है ना, हम सबके अंदर एक अलग सा जोश उफान मार रहा होता है. वीकेंड आ गया, भले ही हम घर में सो रहे होते हैं तो भी वीकेंड को लेकर जो एनर्जी है ना वो एकदम चार्ज्ड अप होती है. और इस बार तो थोड़ा ज्यादा सोएंगे भाई, सुबह सवेरे आजकल उठ भी जा रहे हैं, डिसिप्लिन वाले बॉय हो गए, एकदम उठ के आते हैं, आपसे इतनी बातें करते हैं, फिर 12 एक बजे तक कुछ खाते हैं, बीच में कॉफी भी हो जाती है. आप भी ये सब किया करो, इससे बहुत बेटर फील होगा आपको, आपका गट हेल्थ बड़ा स्ट्रांग होगा. ऐसे ही बोलते हैं आजकल सब इंस्टाग्राम पे पॉडकास्ट करते हुए. मिर्ची इट्स हॉट टडा, हम सबके अंदर एक अलग सा जोश उफान मार रहा होता है. वीकेंड आ गया, भले ही हम घर में सो रहे होते हैं तो भी वीकेंड को लेकर जो एनर्जी है ना वो एकदम चार्ज्ड अप होती है. और इस बार तो थोड़ा ज्यादा सोएंगे भाई, सुबह सवेरे आजकल उठ भी जा रहे हैं, डिसिप्लिन वाले बॉय हो गए, एकदम उठ के आते हैं, आपसे इतनी बातें करते हैं, फिर 12 एक बजे तक कुछ खाते हैं, बीच में कॉफी भी हो जाती है. आप भी ये सब किया करो, इससे बहुत बेटर फील होगा आपको.

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bolda
1: only on Mirchi it's hot.
4: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
5: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more all at one place. Call 5572-7387 today.
6: Our business is our business, none of your business.
7: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
8: 89.6 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: ميرجي هيلب لاين.
1: या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए, व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो खुद डिसाइड कर।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

89.6 Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: देखो, हिट होना अलग बात है और हिस्ट्री क्रिएट करना अलग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची बेटी उन दिन हुआ बाबू मोशाय। और अगर नेशनल अवार्ड्स का नाम आता है तो ये सुनते ही बात समझ में आ जाती है कि यार यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस का कलेक्शन काउंट होता है। और इस साल के 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी जीत रही आर्टिकल 370 की, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एंड इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीता है एज द बेस्ट एक्ट्रेस। नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म के लिए ही म्यूजिक प्रोड्यूसर शाश्वत सचदेव को भी बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड दिया गया है। मूविंग ऑन, बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी इस बार शेयर हुई है। सबसे पहले तो मलयालम सिनेमा के पावर हाउस ममूती को ब्रह्मायुगम के लिए यह अवार्ड दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। और अगर डायरेक्शन डिपार्टमेंट में बाजी मारने की बात करें तो राजकुमार पेरियासमी को फिल्म अमरान के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं कमर्शियल सिनेमा भी पीछे नहीं रहा, पुष्पा 2 को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। एंड दिस अवार्ड इज अ प्रूफ कि भले ही आपकी फिल्में आपका काम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे ना करे, अगर उनको इस अवार्ड कैटेगरी में डाला गया तो आपने कोई ना कोई तीर तो जरूर मारी है। और जब टैलेंट को मिलता है नेशनल अवार्ड तो अप्लॉज सिर्फ थिएटर्स में नहीं पूरे इंडिया में गूंजता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
6: दोनों मिलेगा, मिलेगा।
7: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, स्टेशन 89.6
8: 89.6 FM मिर्ची 1, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, इन्होंने तो संन्यास ले लिया था प्लेबैक सिंगिंग से, बट आई एम मोर देन हैप्पी दैट ही हैज मेड अ कमबैक। मैं बात कर रही हूँ अरिजीत सिंह की, क्योंकि आवारापन 2 जो इमरान हाशमी की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है, उसके टाइटल ट्रैक में इन्होंने अपनी आवाज दी है। यार, कल ये ट्रैक रिलीज भी हो गया, जिसमें लिरिक्स है रश्मि विराग के, म्यूजिक है हमाल मलिक का, एंड ऑफकोर्स आवाज अरिजीत सिंह की। स्टिल मुझे ये गाना उतना टच नहीं कर पाया। इट फेल्ट लाइक तो फिर आओ का रेंडिशन, वहीं बाय द एंड ये गाना दासता है ये रा ओम शांति ओम के इस वाले गाने की भी याद दिला देता है। सो इन शॉर्ट, इस वीडियो को म्यूट करके पुराना इमरान हाशमी गाना लगा दिया जाए तो शायद ऑडियंस ज्यादा खुश हो जाए। बाकी फिल्म रिलीज हो रही है 14th of August को, सी बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर देखा या नहीं? इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग यार। सिद्धार्थ एंड जिमी शेरगिल स्टारर ये नेटफ्लिक्स सीरीज इंस्पायर्ड है इंडियन एयरफोर्स के कारगिल वॉर मिशन से, जो 7th of August से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करेगी। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। भाई, ये अपकमिंग फिल्म है जिसको लेके काफी कॉन्ट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट इस मूवी से एक नया गाना आउट किया गया है जिसका नाम है मदहोश, और इसमें यश के साथ केमिस्ट्री नजर आ रही है तारा सुतारिया की। गाने में म्यूजिक है तनिष बागची, फहीम अब्दुल्ला एंड अरसलान निजामी का, सिंगर है सिद्धार्थ बसरूर, और लिरिक्स है अरसलान निजामी के साथ साथ सईद मुराद गिलानी के। एंड कसम से, ये गाना सुनने के बाद मैं आवारापन 2 के टाइटल ट्रैक को थोड़ा साइडलाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टेस्ट को इस गाने ने ज्यादा किया है यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। बाकी इन दोनों गानों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया उसके बारे में बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टा या फेसबुक पे जरूर कनेक्ट करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, चलिए उनको लगाम लगा के वापस लाइए क्योंकि इस गेम में दिमाग का इस्तेमाल होगा ना। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे अपना नंबर भेजना होता है और मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राहुल, कैसे हो आप?
3: मैं एकदम बढ़िया।
0: तो क्या आप बढ़िया बढ़िया ये गेम खेलना चाहोगे? ओके तो मेरा पहला सवाल है, आमिर खान की फिल्म जिसमें उनका कैरेक्टर है फुंसुक वांगडू,
3: थ्री इडियट्स
0: में आमिर किसके साथ जुबी डुबी करते हैं?
3: करीना
0: की फिल्म जिसमें वो कौन वुमन है और एक गैंगस्टर की सेक्रेटरी बनती है?
3: टशन।
0: यस, टशन में बच्चन पांडे कौन है?
3: अक्षय कुमार
0: की फिल्म जिसमें वो स्ट्रीट साइड कुक बने हैं? चांदनी चौक टू चाइना में अक्षय को किससे प्यार होता है?
3: दीपिका
0: पादुकोण की फिल्म जिसमें उनको बनी से प्यार हो जाता है?
3: ये जवानी है दीवानी
0: में कौन उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है लेकिन रुकना नहीं चाहता?
3: रणवीर कपूर
0: की फिल्म जिसमें उनके पास सुपर पावर है?
3: ब्रह्मास्त्र
0: में शिवा ये कौन करता है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो किडनैप हो जाती है?
3: हाईवे
0: में किडनैपर कौन है?
3: रणदीप हुड्डा
0: की पहली बायोपिक
3: मुझे याद था ना।
0: कोई बात नहीं, नेवर माइंड, इस गेम को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचाया है आपने, देखते हैं अगला फिल्मची कौन होता है हमारा। बट उसके पहले आपको ये टैग तो दे दूं यार,
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई अगर आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को थोड़ा फोमो हो रहा है देन यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर DM कीजिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: जिनेली एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल, हेलो जिनेली, सॉरी यार, टाइम हो गया। सॉरी
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे रियूनियन हुआ आप और एक नया इंसान थोड़ा अलबला गया होगा, क्या है ये, क्या कर रही है, क्या कर रही है ये लड़की। बेसिकली मैं मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे अपना नंबर डीएम करना होता है ताकि मैं इस गेम की शुरुआत आपके साथ कर सकूं कॉल करके। सो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थे राहुल, बट वो एक पॉइंट पे स्टक हुए एंड उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए आई हैव गॉट ऑन द टेलीफोन लाइन नन अदर देन दीपक जी। तो सर मेरा सवाल ये था कि रणदीप हुड्डा की फर्स्ट बायोपिक कौन सी है?
3: सरबजीत
0: में रणदीप हुड्डा की बहन कौन है?
3: ऐश्वर्य राय
0: की फिल्म जिसमें उन्होंने सिलसिला ये चाहत का बुझने नहीं दिया।
3: देवदास
0: में पारो के प्यार में शराबी कौन बन जाता है?
3: शाहरुख
0: खान की फिल्म जिसमें उनको जंगली बिल्लियां पसंद है।
3: डॉन टू
0: में अपने भाई की मौत का बदला लेने कौन आता है?
3: प्रियंका
0: चोपड़ा किस फिल्म में देसी गर्ल बनी है?
3: दोस्ताना
0: में किस हीरो ने येलो चड्डी में अपने सिक्स पैक एब्स फ्लॉन्ट किए? जॉन इब्राहिम की फिल्म जिसमें वो चोरी करते हैं।
3: धूम
0: में एसीपी कौन है?
3: अभिषेक
0: बच्चन की फिल्म जिसमें उनको क्रॉस बॉर्डर लव हो जाता है।
3: रिफ्यूजी फर्स्ट।
0: यस, और इसी के साथ एक बार फिर से दीपक जी बने हैं हमारे अल्टीमेट वाले मिर्ची फिल्म ची।
3: थैंक यू
1: मिर्ची फिल्मची।
0: आई अग्री, आपके अंदर का फिल्मची भी थोड़ा फोमो में जा रहा होगा। देन वरी नॉट माई फ्रेंड, ये गेम हर रोज मेरे शो पे आता है। ऑल यू नीड टू डू इज डीएम मी योर नंबर। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको इंस्टा पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑन।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है?
1: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूं?
0: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

89.6 Mirchi 1. It's hot. Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: ये गाने सिर्फ गाने नहीं हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, देखो जिंदगी में टाइम एंड अगेन हम किसी न किसी सिचुएशन के थ्रू जा रहे होते हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, लेकिन इन सारी सिचुएशंस को समझाने के लिए कुछ गाने हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू हमें मिले हैं, जिनको अप्रिशिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे उस सिचुएशन के लिए वो गाना कुछ ज्यादा ही एप्ट बैठता है। तो बस आज का पंच की लिस्ट इन्हीं गानों को डेडिकेटेड है, जिसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिल्म हाईवे से अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी। वेल अबाउट द मूवी, ये 2014 में रिलीज हुई थी, स्टारिंग आलिया भट्ट एंड रणदीप हुडा एज लीड्स, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली। म्यूजिक इस मूवी का है AR रहमान द्वारा और लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने, और क्या ही लिख दिया है यार इस गाने में उन्होंने कि मालिक ने जो चिंता दी तो दूर करेगा वो ही। और कसम से ये गाना कितना सेंस बनाता है ना, जब आप हंसे पड़े होते हैं तो आपको लगता है कि यार कोई रास्ता ही नहीं है, बट उस वक्त हमें समझना चाहिए, याद रखना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में ये सिचुएशन आई है, देन ऑफ कोर्स वी आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। बस थोड़ा सा दिमाग शांत करके अपने आप को उस रास्ते पे लेकर जाना है, और बस देखना वो रास्ता कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। वेल, कुछ ऐसे ही चार और गाने डिस्कस करना बाकी है इन माई पांच का पंच लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: virba la burka. Mirchi, burka. Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रही है?
2: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बढ़े। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी छोरियां छोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: बाबू मोशाय, ये गानी नहीं चलती फिरती समझदारी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। लेकिन आप तो समझदार हैं बाबू मोशाय, इसलिए तो आज का पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे गानों की डिस्कशन कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में समझदारी भरते हैं। हाँ, तो लिस्ट में सबसे पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द सॉन्ग पटाखा गुड्डी फ्रॉम द मूवी हाईवे, और अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कोक स्टूडियो 14 का गाना तू झूम जो आया था इन द ईयर 2022। सिंगर्स हैं आबिदा परवीन एंड नसीबुलाल, लिरिक्स हैं इस गाने के जुल्फिकार जब्बार खान और अदनान धूल के, म्यूजिक दिया है जुल्फी एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी ने, और भाई साहब इस गाने का एक एक लाइन आपके दिल में ऐसे जाके लगता है कि क्या ही बताओ, स्पेसिफिकली दिस वन।
3: समझ के की करना है, दिल नो है समझावा, तू झूम।
0: सबको समझ के क्या ही कर लेंगे, अपने दिल को ये चीज समझा लो, इसमें ही समझदारी है बाबू मोशाय। क्योंकि लोगों को जो सोचना है आपके बारे में वो सोचते रहेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लो अपनी इमेज बदलने की, सामने वाले को विश्वास दिलाने की अबाउट थिंग्स दैट यू बिलीव इन, बट ऐसा होगा नहीं। इसलिए बेटर ये है कि दूसरों की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी चलाते रहो। मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट फिल्म तमाशा से सफरनामा गाने के बारे में। भाई भाई, 2015 में आई थी ये मूवी, डायरेक्टेड बाय इम्तियाज अली अगेन। म्यूजिक इस मूवी का है एआर रहमान द्वारा, लिरिक्स हैं इरशाद कामिल के, और इस गाने को गाया है लकी अली ने, स्पेसिफिकली दिस लाइन जस्ट टेक्स अवे माय हार्ट।

ऐसा होता है ना कि हम पूरी दुनिया में चैन सुकून ढूंढना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब तक आपका दिल आपका मन शांत नहीं होगा आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। सो ऑल इन ऑल बाबू मोशाय, जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं उसकी शुरुआत अपने अंदर से करो। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: ये गाने नहीं आपकी जिंदगी के सल्यूशन है बाबू मोशाय।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: तो हमारी जिंदगी में कई सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई गाना बिल्कुल एप्ट बैठता है। तो अगर आपकी जिंदगी में फिलहाल नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं तो बाबू मोशाय आज का पांच का पंच की लिस्ट बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अबाउट सच हिंदी सॉन्ग्स जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें समझ देते हैं। इन द लिस्ट सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट पटाखा गुड्डी गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे। नंबर दो पे हमने तू झूम की बात की फ्रॉम कोक स्टूडियो 14। नंबर तीन पे वी टॉक्ड अबाउट तमाशा से सफरनामा सॉन्ग के बारे में। और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट फिल्म पीकू से जर्नी सॉन्ग के बारे में बाबू मोशाय। वेल, ये मूवी डायरेक्ट की सुजीत सरकार ने, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015, जिसमें अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पाडुकोन लीड रोल्स में थे। टॉकिंग अबाउट द म्यूजिक, अनुपम रॉय का अल्टीमेट म्यूजिक है, लिरिक्स भी उनके ही है अलॉन्ग विद मनोज यादव। और अगर जर्नी सॉन्ग की पर्टिकुलरली बात करें तो आवाज है अनुपम रॉय, श्रेया घोषाल, अनुज गुरवारा और एस जानकी की। एंड भाई, इस गाने का ये वाला लाइन जो है ना,
3: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिश है अनजान है अब क्या करें,
0: वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे। भाई, यही तो फलसफा होना चाहिए ना हर इंसान की जिंदगी का, कि जितना भी वक्त है उसको इस तरीके से जियो मानो वो आखिरी पल हो आपका, और अगर दर्द है तो उस पे मरहम करो वरना नासूर बनते उसको देर नहीं लगेगी। वेल, मूविंग ऑन इन द लिस्ट, नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट द सॉन्ग मांझा फ्रॉम द मूवी काई पोचे, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2013, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। मूवी के लीड्स थे सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव एंड अमित साड। म्यूजिक है अमित त्रिवेदी का, लिरिक्स है स्वानंद किरकिरे के। एंड टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, अमित त्रिवेदी और मोहन कनन ने क्या जस्टिस किया है इस गाने के साथ यार, स्पेसिफिकली गाने का ये पार्ट।
4: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्द को दवा देंगे, जीत कभी,
0: रिश्ते पंखों को हवा देंगे, रिश्ते दर्दों को दवा देंगे। हमारी जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए सही रिश्ते बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अप्स में तो सब खड़े होते हैं, असली रिश्ते तो तब पता चलते हैं जब आपका डाउनफॉल होता है। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। वैसे मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कुछ ऐसे ही गाने ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। यहाँ के अलावा कनेक्ट कर सकते हैं ना फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। इन द मीन टाइम, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। भाई, इन्होंने तो संन्यास ले लिया था प्लेबैक सिंगिंग से, बट आई एम मोर देन हैप्पी दैट ही हैज मेड अ कमबैक। मैं बात कर रही हूँ अरिजीत सिंह की, क्योंकि आवारापन 2, जो इमरान हाशमी के अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म है, उसके टाइटल ट्रैक में इन्होंने अपनी आवाज दी है। यार, कल ये ट्रैक रिलीज भी हो गया, जिसमें लिरिक्स है रश्मि विराग के, म्यूजिक है हमाल मलिक का, एंड ऑफकोर्स आवाज अरिजीत सिंह की। स्टिल मुझे ये गाना उतना टच नहीं कर पाया। इट फेल्ट लाइक तो फिर आओ का रेंडिशन, वहीं बाय द एंड ये गाना दासता है ये रा ओम शांति ओम केस वाले गाने की भी याद दिला देता है। सो इन शॉर्ट, इस वीडियो को म्यूट करके पुराना इमरान हाशमी गाना लगा दिया जाए तो शायद ऑडियंस ज्यादा खुश हो जाए। बाकी फिलम रिलीज हो रही है 14th of August को, सी बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर देखा या नहीं? इट इज क्वाइट इंट्रीगिंग यार। सिद्धार्थ एंड जिमी शेरगिल स्टारर ये नेटफ्लिक्स सीरीज इंस्पायर्ड है इंडियन एयरफोर्स के कारगिल वॉर मिशन से, जो 7th of August से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम करेगी। सी बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। भाई, ये अपकमिंग फिल्म है जिसको लेके काफी कॉन्ट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट इस मूवी से एक नया गाना आउट किया गया है जिसका नाम है मदहोश, और इसमें यश के साथ केमिस्ट्री नजर आ रही है तारा सुतारिया की। गाने में म्यूजिक है तनिष बागची, फहीम अब्दुल्ला एंड अरसलान निजामी का, सिंगर है सिद्धार्थ बसरूर, और लिरिक्स है अरसलान निजामी के साथ साथ सईद मुराद गिलानी के। एंड कसम से, ये गाना सुनने के बाद मैं आवारापन 2 के टाइटल ट्रैक को थोड़ा साइडलाइन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे टेस्ट को इस गाने ने ज्यादा टिकल किया है यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। बाकी इन दोनों गानों में से आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया, उसके बारे में बताने के लिए मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे इंस्टा या फेसबुक पे जरूर कनेक्ट करना। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: जिनीलिया देशमुख,
3: आर यू अ ऑनेस्ट क्रिटिक?
4: आई एम एन ऑनेस्ट क्रिटिक बट आई एम आल्सो गुड फॉर योर ईगो।
3: अरे क्या बात है।
4: Like even if you're my friend, I mean,
3: मुझे वैलिडेट कर ले यार। हेलो जिनीलिया, आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट।
4: अरे ऑनेस्ट
3: हूं मैं। क्वीन, वेयर इज योर क्राउन?
2: She's an honest critic, but a very funny person also. Ye thi Jinelia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Hey! Basanti, in kutto ke saamne mat naachna.
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Emergency helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: बाबू मोशाय, आजकल तो इंटरनेशनल फिल्में भी इंडियन मार्केट में कम्पीट कर रही है।
2: श्रुति, श्रुति, श्रुति।
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून देन हो आप, और चलो इस कॉम्पिटिशन के बारे में थोड़ा डिटेल्ड में बातचीत करते हैं। देखो, मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ इट वॉज मैंशन कि क्रिस्टोफर नोलन की रिसेंटली आई फिल्म द ओडिसी ने टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का रिकॉर्ड शैटर कर दिया है। And this happened because the Odyssey earned ₹15.33 crore from just 34 IMAX screens. और अगर ओवरऑल ग्लोबल कलेक्शन की बात करें अबाउट द मूवी, तो इस फिल्म ने आईमैक्स के साथ $52 मिलियन कलेक्ट किए हैं, जिसमें से 20% ऑफ द कमाई इज फ्रॉम द स्क्रीन्स दैट शोकेस्ड द फिल्म इन इंडिया, विच एक्चुअली इज एन एग्जांपल कि ग्लोबल मार्केट हाइपर लोकल बनता जा रहा है। तो आपने जो अपने दिमाग में वेस्टर्न कल्चर को लेकर एक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर बना रखी है, उसको रखिए, जरूर रखिए, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट योर रूट्स एज वेल। बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidvala burga. Milci, burga.
2: Hello? Hello?
3: Sir, very good evening, man. Bank se bol raha hoon.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
3: सर, आप तो सर पूरा बताइए
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया
3: सर? आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है
3: क्या? अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो
3: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन?
3: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
0: FM, मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
2: मिर्जा बेटी उंडन हो आप, और इस मूवी में एक किरदार है जिसको निभाया था आमिर खान ने, एंड दैट वाज फुंसुक वांगडू का। आप देखो वो तो ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं था, बट इनसे ही मिलते जुलते एक एक्चुअल इंसान है जो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं फॉर इंडिया। बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि मुझे तो फिल्म थ्री इडियट्स के बारे में आपको अपडेट देना है यार। सो आपको याद होगा पिछले साल आमिर खान के बर्थडे के टाइम पे, यानी उनके जो 60th बर्थडे का माहौल था, उस टाइम एक स्पेशल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था इन जहां हमारे जैसे मूवी बफ्स के लिए आमिर खान की आइकॉनिक फिल्में एक बार फिर से रिलीज की गई, लाइक दंगल, लगान, हम है राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, गजनी, अकेले हम अकेले तुम, अंदाज अपना अपना, तारे जमीन पर, जो जीता वही सिकंदर, सरफरोश एंड व्हाट नॉट। बट इस लिस्ट में विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म थ्री इडियट्स नहीं थी। और अगर आप इस फिल्म के बहुत बड़े फैन रहे हैं एंड यू मिस्ड आउट द अपॉर्चुनिटी टू वॉच इट इन द थिएटर्स, तो आपके लिए एक बार फिर से ये मौका आ रहा है, क्योंकि 4th of September को ये फिल्म एक बार फिर से थिएटर्स में आएगी। बाकी फिलहाल जो हमारे देश के स्टूडेंट्स का हाल चल रहा है, इट इज नॉट एट ऑल वेल, सोचने वाली बात। निर्चिपे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने परिणीति चोपड़ा को सॉरी बोला। फिल्म का नाम एनिमल। अब आप अगर सोच रहे हैं कि भाई इस मूवी में परिणीति तो है ही नहीं श्रुति, सो बेसिकली संदीप रेड्डी वांगा की पहली पसंद टू प्ले द कैरेक्टर गीतांजलि वाज परिणीति चोपड़ा। हाँ जी, मूवी अनाउंस भी हुई थी, एक वीडियो आया था जिसमें परिणीति का नाम भी आ चुका था, और तो और शूट शुरू होने के 1.5 साल पहले एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ था परिणीति और संदीप रेड्डी वांगा के बीच। बट समहाउ संदीप को लेटर ऑन परिणीति फॉर द रोल ऑफ गीतांजलि पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने रश्मिका मंदाना को लेने का सोचा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स ही अपोलोजाइज्ड टू परिणीति। तभी मैं कहती हूँ बाबू मोशाए, बड़े पर्दे में जो कहानी आप देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छुपी हुई कहानियां होती हैं जो मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो 9939839983 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां कनेक्ट करके अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताओ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम वेयर यू नेवर अंडरस्टैंड एंड इफ यू स्टार्ट जस्टिफाइंग इट। जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि यू नो तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट हिम।
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा टॉकिंग अबाउट विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
4: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
3: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
5: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
6: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।
7: मिर्ची फ्रेश माल।
8: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: यार देखो, हिट होना अलग बात है और हिस्ट्री क्रिएट करना अलग।
2: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची बेटी उन दिन हुआ बाबू मोशाय, और अगर नेशनल अवार्ड्स का नाम आता है तो ये सुनते ही बात समझ में आ जाती है कि यार यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं, परफॉर्मेंस का कलेक्शन काउंट होता है। और इस साल के 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सबसे बड़ी जीत रही आर्टिकल 370 की, जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। एंड इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने अपना पहला नेशनल अवार्ड भी जीता है एज द बेस्ट एक्ट्रेस। नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म के लिए ही म्यूजिक प्रोड्यूस शाश्वत सचदेव को भी बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर का अवार्ड दिया गया है। मूविंग ऑन, बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी इस बार शेयर हुई है। सबसे पहले तो मलयालम सिनेमा के पावर हाउस ममूती को ब्रह्मा युगम के लिए यह अवार्ड दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड मिला। और अगर डायरेक्शन डिपार्टमेंट में बाजी मारने की बात करें तो राजकुमार पेरियासमी को फिल्म अमरान के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं कमर्शियल सिनेमा भी पीछे नहीं रहा, पुष्पा 2 को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। एंड दिस अवार्ड इज अ प्रूफ कि भले ही आपकी फिल्में आपका काम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे ना करे, अगर उनको इस अवार्ड कैटेगरी में डाला गया तो आपने कोई ना कोई तीर तो जरूर मारी है। और जब टैलेंट को मिलता है नेशनल अवार्ड तो अप्लॉज सिर्फ थिएटर्स में नहीं पूरे इंडिया में गूंजता है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, एंड हियर्स माय हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मेरी तो खत्म हो गई, आपकी बची है क्या?
1: मस्त मौला गौरव।
0: अरे सैलरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि मेरी तो 10-12 तारीख के बाद नदारद हो जाती है, लेकिन अगर आपकी बची है तो घर भेजने के लिए रेट्स क्या मिल रहे हैं बता दे। एक कतरी रियाल के बदले आई पे ऐप पर आपको मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.36 रुपए 26.36 INR। वही 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 92.20। अगर इसके बाद हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तानी रुपीज की, तो 76.32 वाहिद कतरी रियाल के बदले 76.32 पाकिस्तान रुपीज। वही तपाई को नेपाल रुपीज का रेट छो दाजो, 1 कतरी रियाल के बदले 42.16 का भलचा रेट दाजो। हाँ जी 42.16 को रेट छो बहनी, घर भेजने लगे एकदम साइड रेट छो। अगर इसके बाद हम बांधो बांग्लादेशी टाका की बात करेगा, 1 कतरी रियाल के बदले 33.93 तो हाँ जी 33.93 बांग्लादेशी टाका रेट चिल्म। एंड ये बहुत भालो रेट थी के, तो मस्मौलगर इतने कहेगा अगर बचे हैं पैसे तो घर भेज दो, ये अच्छे रेट्स जल्दी जल्दी मिलते हैं। आई पे ऐप पर 89.6 मिर्ची वन इसका रेट छो दाजो, 1 कतरी रियाल के बदले 42.16 का भलचा रेट दाजो। हाँ जी 42.16 को रेट छो बहनी, घर भेजने लगे एकदम साइड रेट छो। अगर इसके बाद हम बांधो बांग्लादेशी टाका बात करेगा, 1 कतरी रियाल के बदले 33.93 तो हाँ जी 33.93 बांग्लादेशी टाका रेट चिल्म। एंड ये बहुत भालो रेट थी के, तो मस्मौलगर इतने कहेगा अगर बचे पैसे तो घर भेज दो, ये अच्छे।

0: तो नहीं।
1: एज अ किड हमारी ट्रेनिंग में ये भी आता था कि घड़ी देखकर बताओ क्या वक्त हुआ है।
2: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. यार वाकई में हमें एनालॉग क्लॉक्स एंड वॉचेस पढ़ना सिखाया गया था कि वक्त बताओ इसमें कैसे पता लगेगा तुम्हें। रोमन नंबर्स की काउंटिंग सिखाई गई थी ताकि तुम घड़ी देखकर टाइम बता पाओ कि कितना बचा है। हम वो जनरेशन है जिनको ये पता है कि पौने एक, पौने दो, पौने तीन, पौने चार का मतलब क्या होता है। लेकिन फिर हम आज वही जनरेशन हो गए जो फोन में देखकर वक्त बता देते हैं क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है यार इसके ऊपर कि कितने बजे हैं। मैंने ये देखा है कि घड़ियां पहनना बहुत कम कर दिया है यार लोगों ने। या स्मार्ट वॉचेस देखते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेप्स काउंट करने के लिए, वक्त देखने के लिए तो आज भी फोन ही उठाते हैं। लेकिन आई टेल यू, आई एम अमंगस्ट वन ऑफ दोस पीपल ओल्ड स्कूल कि मैं घड़ी देखती हूँ यार वक्त देखने के लिए। मुझे बड़ा मजा आता है यार घड़ी पहनना, और वो भी ओल्ड स्कूल नॉट स्मार्टफोन वाली। एनालॉग वॉचेस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। जस्ट इन केस अगर कोई सुन रहा हो और गिफ्ट विफ्ट करना हो तो यू नो इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन जो मैंने हल्के से खिसका दिया है। बट लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। आप आज भी फोन से टाइम देखना पसंद करते हो या घड़ी से टाइम देखना पसंद करते हो? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। और अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डाल देती हूँ। आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. Na vidva la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35 14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है। आप मेरे को क्यों बता रहे हो, ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद।

0: आईबी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईबी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल सीधा नो टेंशन. चेक द आईबी ऐप टुडे फॉर आवर 5 10 15 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईबी स्मॉलर फीस बिगर स्माइल्स. टीएनसी अप्लाई.
1: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा.
2: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
3: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: ऊपर वाले की कृपा रही है बॉस कि आज तक हमने कौवा बिरयानी खाई तो नहीं, लेकिन कौवा बिरयानी सुनी जरूर है। और जहाँ कहीं कौवा बिरयानी लफ्ज आता है तो हमें याद आ जाती है द फिल्म रन।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And actually, मुझे ऐसा लगा था कि यार कहीं ऐसा ना हो जब ये फिल्म रिलीज हुई थी कि यार नाम भी रन है और काम भी रन हो जाए, कि ऑडियंस जो है वो रन करती हुई नजर आ रही है, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हालांकि फिल्म बहुत बड़ी हिट भी नहीं हुई, लेकिन फिल्म ने मजा जरूर दिलाया जिसने इस फिल्म को अपना वक्त दिया था। एंड वेल, दिस फिल्म वॉज एक्चुअली अ रीमेक बट विद अ ट्विस्ट। इट वॉज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म जिसका नाम था जीवा, एंड द डायरेक्टर वॉज द सेम, जिन्होंने जीवा बनाई थी उन्होंने ही रन बनाई थी। लेकिन हिंदी वाली रन के अंदर उन्होंने थोड़े से ट्विस्ट किए और जो कॉमिक एलिमेंट्स थे ना वो ज्यादा डाले, ताकि ये जो फिल्म है ये बॉलीवुड ऑडियंस को अच्छी तरीके से सूट कर पाए। स्पेशली विजय राज का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था इस फिल्म के अंदर, जो कि ओरिजिनल तमिल वर्जन जीवा के अंदर नहीं था। एंड दिस डिसीजन वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस बिकॉज ऑफ द रीजन की इस फिल्म को आज भी हम कौवा बिरयानी एंड विजय राज की वजह से बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं बॉस। बट लेट मी टेल यू अबाउट द एक्शन सीन्स ऑफ दिस फिल्म। वेल, फर्स्ट हाफ के अंदर जो एक्शन सीन्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे ओल्ड दिल्ली के रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे, जिससे कि मूवी को भी काफी अच्छा खासा ऑथेंटिक लुक मिल रहा है। स्पेशली वो जो रूफटॉप से कूदने फांदने वाले सीन्स हैं और गलियों में से भागने वाले सीन्स हैं, वो सारे के सारे सेट्स में से नहीं लेकिन पुरानी दिल्ली के रियल लोकेशंस पर शूट किए गए थे। एंड रूफटॉप के सीन का जिक्र एक्चुअली रिमाइंड्स मी कि यार ये रूफटॉप जो है ना, इट कुड हैव लैंडेड अभिषेक बच्चन इनटू अ हॉस्पिटल। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में, अभी के लिए यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: मिडडे मोहब्बत प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान,
0: खान। मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: जान बची तो लाखों पाए, और जब रन मूवी की शूट चल रही थी ना, तो लौट के अभिषेक घर को आए.
0: मिर्ची चैट रूम.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And while the film was being shot, at that time, अभिषेक बच्चन को एक गहरी चोट लगते लगते बच गई थी. There was this chase scene, और उस chase scene के अंदर उनको rooftop के बीच में jump मारना था. मतलब सोचो, ये खुद ही कर रहे थे, stuntman नहीं था इसके अंदर. And well, जब इतनी लंबी लंबी टांगे हैं किसी की, तो यार jump मारना इतना मुश्किल भी नहीं होगा. लेकिन मुश्किल वहां तब पड़ी जब उन्होंने अपने इस jump को miscalculate कर लिया. बट बाल बाल बच गए जब वो गिरे, और फौरन से उन्होंने उस रेलिंग को पकड़ लिया. अगर ना पकड़ा होता तो वो सीधे नीचे जाते और उनको गहरी चोट लग सकती थी. सो लकीली ही एस्केप्ड विद माइनर ब्रूजेस, लेकिन मेजर इंजरी नहीं आई उनको. यहाँ अभिषेक बच्चन के एक्शन के अंदर स्पॉन्टेनिटी थी, और वहाँ विजयराज की कॉमेडी के अंदर स्पॉन्टेनिटी थी. हमने विजयराज की लाइनें इतनी दिल से रटी हुई हैं, जिसमें से कौवा बिरयानी वाला सीन जो है वो तो हमें पूरा का पूरा रटा रटाया हुआ है बॉस. लेकिन क्या आपको पता है कि विजयराज ने अपनी काफी सारी लाइनों को ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया है, और ये कौवा बिरयानी वाला जो सीन था ना, ये एक्चुअली पार्शली अनस्क्रिप्टेड था. लेकिन जब विजयराज ने इस पर इम्प्रोवाइज किया ना, तो क्रू भी हंसने से नहीं बचा बॉस. उन लोगों के भी हंसी के ठहाके छूट गए जब ये शूट चल रहा था. तो एंड ऑफ कोर्स जब हम स्क्रीन पे देख देखते पगला रहे हैं, तो ऑन ग्राउंड तो क्या ही हाल हुआ होगा यार लोगों का. लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद, देयर वाज दिस वन थिंग जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. बिहाइंड द सीन्स देयर वाज दिस बजट कंस्ट्रेंट, जिसकी वजह से द फिल्म वाज एक्चुअली मेड ऑन अ वेरी लो बजट. और यही वजह है कि इस फिल्म को रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है, नेचुरल लाइटिंग में शूट किया गया है. आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर सीन्स जो है वो दिन के ही हैं, ताकि लाइट का पैसा बच पाए. लेकिन क्योंकि इतनी कॉस्ट इफेक्टिव मूवी बनाई और काफी डिसेंट मूवी बना दी थी, तो इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की काफी तारीफ भी की गई थी. हालांकि फिल्म थिएटर्स में इतनी नहीं चली, लेकिन यार हमारे लिए ये फिल्म टेलीविजन पर, यूट्यूब पर, हर कहीं कल्ट फिल्म बन गई है. कि आज भी हम इस फिल्म को निकाल निकाल के देख ही लेते हैं कभी ना कभी, कि यार आज वो वाली फिल्म देखते हैं, या फिर इस फिल्म के वो वाला सीन जो है ना वो देख यार मजा आ जाता है. अक्सर जब दोस्तों की बैठक लगती है ना, तो ये सीन तो हमारे जिक्र में होते ही होते हैं यार. सो बेसिकली ये फिल्म इतनी सही तो बन गई कि पब्लिक इस फिल्म से नहीं रन कर रही है, बल्कि आज तक भी इस फिल्म की तरफ रन कर रही है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगन एज रेडियो जॉकी, करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था, बहुत मजा आता था। मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Emergency Helpline?
1: या या या मिर्ची हेल्पलाइन, बताओ क्या प्रॉब्लम है?
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए, व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा? तो खुद डिसाइड कर।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल स्ट्रेस इतना है कि बालों ही बालों का गुच्छा नजर आता है, बट वो स्ट्रेस फ्री टाइम भी था जब कहानियों का गुच्छा आया करता था।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और संडे की सुबह ब्रंच टाइम पर टाइम हुआ करता था

कहानियों के गुच्छे का। आज उस टाइम के बारे में सोचो ना तो अनरियल लगता है कि ये टाइम भी हमने जिया था, जब एक कहानी के गुच्छे का इंतजार करते करते संडे की आधी सुबह गुजर जाया करती थी, क्योंकि ये शो ना थोड़ा लेट आया करता था, बिल्कुल संडे मूड में। बट डू यू नो, इस शो के गाने को भी फेमस डुओ गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज ने ही बनाया है। लिखा गुलजार साहब ने और म्यूजिक कॉम्पोजिशन विशाल भारद्वाज का है। ये तब की बात है जब विशाल सिर्फ गाने कंपोज किया करते थे। और कहानियों के गुच्छे के बारे में सोचने के बाद ना, अब मेरा मन आज की मेरी जो टू डू लिस्ट है ना, उसमें तो नहीं लगने वाला यार। आपका भी नहीं लगेगा ना, तो रहने देते हैं ना यार। आज मैं वापस आने में अभी टाइम है, तब तक हम 90s में ही रहते हैं ना, मेरे यानी सारा के साथ ऑन मिड डे मोहब्बत। तो स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज ऑल्सो विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब की जोड़ी का एक और कमाल। स्टे ट्यून्ड।

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. La virtua la murga.
0: Mirci, murga.
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पे जान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: अरे यार जरा ये भी ये बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
7: दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: अंदाज हमी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम हिज एल्बम तेरा चेहरा। और याद है आपको वो टाइम जब ये एल्बम रिलीज हुआ था और सबके सब जो है ना वो दीवाने हुए चले जा रहे थे इस एल्बम को लेकर कि अरे यार क्या म्यूजिक निकला है। और एक्चुअली यहाँ बहुत प्यारा म्यूजिक बनाया था और जो पिक्चराइजेशन था दैट वॉज ऑल्सो वेरी डिफरेंट एंड बहुत बहुत हवा थी यार इस एल्बम की। एंड क्लियरली अदनान सामी वॉज ऑल्सो क्वाइट फेमस फॉर द रीजन की अरे एक ऐसा बंदा आया है जो लंडन से है और उसके रूट्स जो है वो हमारी नेबरिंग कंट्री के हैं और दिखता बड़ा क्यूट है लेकिन गाता बड़ा सही है। अदनान सामी खुद अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनको पीआर की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही अपना पीआर थे, चलते फिरते
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो जी अब हम भी चलते फिरते आगे बढ़ते हैं और लेकर आते हैं मान ना मान करो गानों की पहचान, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं आपको सुना देती हूँ और आपको बताना होता है कि ये दो गाने आखिर कौन से हैं। तो जी बस आज का जो मिक्स है वो कुछ ऐसा है, सुनिए जरा और बताइए मुझे।

0: बस जी, अब मुझे डीएम करिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता दीजिए कि ये दोनों गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिडडे मोहब्बत
2: प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है.
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान.
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना.
3: Oh,

अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा, दोनों धुनें एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं। एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू। यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी। वाह, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जिनेली एंड रितेश आ दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए।
4: अलार्म लगा है। ओ कॉल है।

0: Hollywood Bollywood Bolda
1: Only on Mirchi It's Hot
2: जिनेलिया एंड रितेश आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोला

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
3: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
4: बार बार
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
3: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की जो कैमराडरी है ना, ये बहुत साल पुरानी है।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, सैफ अली खान और अक्षय कुमार ने एक दूसरे के साथ 90s में तो काम किया, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया जब 9 सालों तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। And finally, they worked together in the film Tashan। और वहाँ इनकी दोस्ती जो है वो पुरानी वाली दोस्ती नजर आती है अगर बिहाइंड द कैमरा वाले सीन्स देखे जाए तो। वेल, टशन एक ऐसी मूवी थी जो कि पोल्स के अकॉर्डिंग वाज मोस्ट अवेटेड फिल्म ऑफ 2008, लेकिन इसी के साथ साथ इट आल्सो बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप ऑफ 2008। और सीन ऐसा था कि करीना कपूर जो थी वो उस वक्त जब वी मेट और टशन दोनों ही फिल्मों पर साइमल्टेनियसली काम कर रही थी, लेकिन करीना कपूर ने कभी नहीं सोचा था कि जब वी मेट जो है वो टशन से बड़ी हिट हो जाएगी। इनफैक्ट इन हर हेड शी वॉज थिंकिंग कि जब वी मेट तो ठीक है यार, मैं कर रही हूँ, इट्स ओके, चली तो चली, ना चली तो ना चली। उनको ज्यादा उम्मीद नहीं थी उस फिल्म से, लेकिन टशन से डेफिनेटली थी, बिकॉज देयर वॉज सैफ अली खान, देयर वॉज एन अक्षय कुमार, एंड ऑल्सो दिस वॉज अ यशराज बैनर फिल्म। तो उनको ये लग रहा था कि टशन पे फुल फोकस करना है, तभी तो उन्होंने जीरो फिगर भी बनाया, इतनी मेहनत करी। लेकिन इवेंचुअली दिस फिल्म फ्लॉप्ड, एंड आयरॉनिकली जब वी मेट बिकेम अ वेरी बिग हिट। इनफैक्ट करीना ने इस फिल्म पर इतनी मेहनत करी जीरो फिगर बनाने के लिए कि शूट के दौरान देयर वाज दिस वन टाइम जब वो बेहोश भी हो गई थी, और फिर जब मूवी रिलीज हुई तो उसके बाद फिल्म मेकर्स के बेहोश होने की बारी आ गई। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Midday Mohabbat presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vizba la murga. Milci, murga.
1: Hello?
2: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया है हेलो। और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे हूज दिस।
1: कौन बोल रहा है
2: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
1: क्या मजाक चल रहा है?
2: सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कॉमेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया। सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए।
3: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बने। और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कु।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever and ever.
1: Sara zamana, sara ka diwana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
3: The movie Tashan was actually Patodi's ki family film. Kaise? Batati hu.
2: Mirchi. Chat room.
3: Hi, this is me, Sara, aapki 90s ki yaadon ka pitara. And is film mein hame to pata hai ki Saif Ali Khan aur Kareena Kapoor to the hi. Do us time par in dono ki shaadi nahi hui thi aur ye jo mohabbat ka silsila hai sirf shuru hi hua tha. Lekin haan, dheere dheere karke family banni shuru to hui gayi thi, ye keh sakte hain. And in fact, is film ke andar Saif Ali Khan ke bete bhi hain. And I'm talking about Ibrahim Khan. जिन्होंने सैफ अली खान के बचपन वाला जो रोल है वो प्ले किया है. अगर अब आप ये फिल्म वापस से देखते हो ना तो आपको याद आ ही जाएगा. एंड कमिंग बैक टू सैफ अली खान और करीना कपूर की लव स्टोरी, वेल इसी मूवी के सेट्स पर इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी. और एक किस्सा भी है इनकी लव स्टोरी का, जहां पर अक्षय कुमार सैफ अली खान को भाईचारे में एक बात समझा रहे थे कि यार भाई देख, तुझे पता है ना कि तू क्या कर रहा है. बिकॉज ऑफ कोर्स सेट्स पे सबको पता था कि सैफ अली खान एंड करीना कपूर आर इन्वॉल्वड. और उन्होंने सैफ अली खान को साइड में ले जाकर ये बात बताकर उन्हें अलर्ट करने की कोशिश की कि भैया टाइम पास वाइम पास तो नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इन दोनों बहनों को यानी कि कपूर सिस्टर्स को लाइटली मत लेना. क्योंकि अक्षय कुमार को लगा था कि सैफ अली खान इज जस्ट प्रोबेबली डूइंग सम टाइम पास. लेकिन सैफ अली खान एट दैट टाइम प्रोबेबली वाज वेरी क्लियर इन हिज हेड, बिकॉज उन्होंने अक्षय को यही कहा कि मुझे पता है भाई मैं किस तरफ और किस डायरेक्शन में हेड कर रहा हूँ. और वो डायरेक्शन आज तो हमें पता ही है, तैमूर और जय के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: Midday Mohabbat
4: presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हरिहरन एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में बॉम्बे फिल्म से ये गाना इस कैसेट के साइड बी का चौथा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: तू ही रे, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक यार, जिसकी ऑफ कोर्स कंपोजिशन इज बाय एआर रहमान साहब। और क्या कंपोजिशन दी है, मतलब इस गाने को जब मैं सुनती हूँ ना, आंखें बंद करके अगर आप इस गाने को सुनो तो आपको भी लगेगा कि आप समंदर के किनारे एक चट्टान के ऊपर खड़े हो और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हालांकि ये गाना जो है ये काफी दिल तोड़ने वाला गाना है, जहां पर दो लोग जो है वो बिछड़ गए हैं और एक दूसरे से मिलने की आह और चाह में इस गाने को लिखा गया है। मुझे ना ये वाली लाइन बड़ी अच्छी लगती है, जहाँ पर प्यार की जो इंतहा होती है जब वो क्रॉस कर जाती है ना, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा इंसान लफ्जों में, जो आम तौर पर आप और मुझ जैसे इंसान तो नहीं कर पाते हैं, एंड दैट इज वेयर क्लैशेस आते हैं। तो यस, ऐसे टाइम पे इन गानों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यार इस गाने के अंदर क्या लिखा हुआ है सुनो। इन सांसों का देखो तुम पागलपन के, आए ना चैन इन्हें, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी, अपने बिछा दूं ये नैन। और जहां पर लोग एक दूसरे से ना मिलने पर नाराज हो जाते हैं कि तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुमने डेट प्लान नहीं करी, हम बाहर कब जाएंगे, हम नेक्स्ट कब मिलेंगे, ये 90s का गाना पता है क्या कहता है कि 100 बार बुलाए मैं 100 बार आऊं, एक बार जो दिल दिया, एक आंख रोई तो दूजी बोलो सोएगी कैसे भला। ओ हो, महबूब साहब ने भी ना हमारा दिल ले लिया वाकई में। तो चलो फिर, हमेरा ही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं तो आपको मिल ही जाऊंगी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। अपना ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून रहिएगा टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Janilia Deshmukh.
3: Are you an honest critic?
4: I'm an honest critic, but I'm also good for your ego.
3: Are kya baat hai?
4: No, like even if you're my friend, I mean,
3: mujhe validate kar le yaar. Hello, Janilia. I'm not feeling great.
4: Are you honest too, man?
3: Queen. Where's your crown?
2: She's an honest critic, but a very funny person also. Ye thi Janilia Deshmukh on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: Nahi! Basanti, in kutto ke saamne mat nachna.
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
1: FM
0: मिर्ची 1 बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है
7: कैसे रुक सकता है
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: यार एक बात मुझे समझाती नहीं है, कोई भी मूवी डाउनलोड करो प्रिंट हमेशा खराब निकलती है, क्या करूँ।
1: अबे तेरे को पता ही है कि हमेशा खराब निकलती है, तो तू प्रिंटर बदल देना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 4 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
1: हाँ।

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट।

लाइफ में ना हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, लेकिन हर एक मूवी में ना कुछ एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है। वेलकम टू शाम शानदार, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इंस्पिरेशनल रोल्स के बारे में। तो भाई मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है गीत फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। करीना कपूर जी ने इसमें एक्ट किया है, इम्तियाज अली जी की पूरी क्रिएशन है। एंड यू नो ये मूवी मुझे इसीलिए इंस्पायर करती है क्योंकि गीत कैरेक्टर ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक इन्फेक्टियस काइंड ऑफ बिहेवियर है उनका, बहुत चुलबुलापन, हैप्पीनेस, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। बाद वाली गीत थी ना वो अच्छी नहीं लगी, उन्होंने अपनी लाइफ में जब बिट्रेल देखा दुखी हो गई, अपनी लाइफ को बिल्कुल यूजलेस बना दिया। तो आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि लाइफ में नो मैटर व्हाट, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को इतना डाउन, इतना सैड नहीं करना चाहिए। चाहे कोई इंसान आपके साथ जैसा भी बिहेव कर रहा हो, यू आर द वन हु टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर माइंड एंड योर हार्ट। तो बस किसी को इतनी ज़्यादा तवज्जो मत दो कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। बस ऐसी ही मजेदार बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3K 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: यार
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: Why go outside to see a doctor when health care can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
7: अर्ज किया है
8: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With आईपी, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, सीधा, no tension. Check the आईपी app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. आईपी, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: तो सिर्फ
2: छोरे करें. हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
3: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

चाइना में ना एक स्पेशल बैम्बू ट्री होता है। जब उसका बीज बोया जाता है ना, तो पहले साल कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी कुछ नहीं दिखता, तीसरे साल भी कुछ नहीं दिखता, और चौथे साल भी जमीन के ऊपर कुछ ही नहीं उगता। लेकिन जो इंसान उसको रोज पानी दे रहा होता है ना, जो उसका माली है, वो रोज उसे पानी देता है। उसको पता है कि कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी देखभाल कड़ी मेहनत और प्यार भरे तरीके से देता है। फिर आता है पांचवां साल, और सिर्फ 5 से 6 हफ्तों में वो जो बैम्बू ट्री है ना, वो 80 से 90 फीट तक लंबा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अब ये सवाल है कि क्या बैम्बू सिर्फ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो पिछले 5 सालों से अपनी रूट्स मजबूत बना रहा था। अगर जड़ मजबूत ना होती तो इतनी ऊंचाई संभाल ही नहीं पाता। बिल्कुल हमारी लाइफ भी ना इसी की तरह है। कभी कभी लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट्स तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन शायद उस वक्त आपकी रूट्स तैयार हो रही होती है, आपको इतना तैयार कर रही होती हैं आपके स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस और आपका कॉन्फिडेंस के साथ आपको इतना तैयार कर रही होती हैं कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते, लेकिन आप कहीं ना कहीं बहुत मजबूत हो रहे होते हो। तो याद रखिए, सक्सेस जो है ना, वो हमेशा दिखने से पहले अंदर ही अंदर बनती है। इसलिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब वक्त आएगा ना, तो आपकी ग्रोथ भी सबको सरप्राइज कर देगी। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: आजकल के बच्चे ना बड़े ही लकी हैं, उनको ऐसा मौका मिल रहा है इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने का। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक अंकल आते थे, झूले को ऐसे खुद ही हाथ से घुमाते थे और हम वो झूल के खुश हो जाते थे। लेकिन आपके जो बच्चे हैं ना, उनको आप बुद्धू नहीं बना सकते, उनको आप इतने इंटेलिजेंट है ना, उनको आप घुमा नहीं सकते, लेकिन वो हमें घुमा सकते हैं उल्टा। और उनके लिए ना वैसे ही इवेंट्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं कि उनकी पर्सनालिटी वो सूट करते हैं। तो अभी ये एक इवेंट बता रही हूँ ना आपको, जो है द कलर वर्स एक्सपीरियंस, जो एक इंटरैक्टिव फैमिली फोकस्ड एंटरटेनमेंट है। एंड ये अट्रैक्शन रोज हो रहा है, 15 जुलाई से ये शुरू हो चुका है एंड 15 सितंबर तक रहेगा, कतारा कल्चरल विलेज में, साउथ पार्किंग में। एंड ये डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद स्पेस टून, जो एक मल्टी सेंसरी इंडोर अट्रैक्शन विजिटर्स के लिए क्रिएट करती है। एंड ये बड़ा वाइज डिसीजन है इस टाइम, क्योंकि बहुत ही गर्मी है बाहर और इस दौरान हम इंडोर एक्टिविटीज ही सोचते हैं बच्चों के लिए। ये बहुत ही वाइज डिसीजन है, बच्चों के साथ जाइए, इंजॉय करिए। एंड बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एंड बच्चा भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे। बस जाइए और इंजॉय करिए एंड मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे ही इवेंट्स आपको बताती रहूंगी साथ ही साथ। सो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड साथ।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म। RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
4: अभी कॉल करें 3100-0813।
6: Why go outside to see a doctor when health care can come to you?
7: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
8: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
9: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
10: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: रास्ते ही कुछ दूर चलते ही याद आया कि भाई पानी की बॉटल और सनग्लासेस नहीं उठाए।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, वेदर की बात कर लें कि भाई पार्टली सनी है एंड 47 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील्स लाइक भी 47 है। रात होते होते टेम्परेचर थोड़ा सा गिरेगा और 36 डिग्री तक हो जाएगा। एंड यस, अगर आपको घर से बाहर निकलना बड़ा ही जरूरी है तो शाम में ही निकलिए, इतनी धूप में मत निकलिए, और अपने साथ पानी और सनग्लासेस ले जाना ना भूलिएगा बाबू मुशाय। और बने रहिएगा मेरे साथ, यानी मिर्ची शा के साथ, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वाला सॉट।
2: Weather check brought to you by RSL Group of Company. Ab pao Qatar mein delivery riders aur driver ki job. For bright future call now 3100 0813.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
3: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
2: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Boldal Bollywood Bollywood Bollywood Boldal
1: Only on Mirchi It's Hot।
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
6: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more. All at one place. Call 5572-7387 today.
7: Hello Shops. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
8: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा।
7: relative से advice लो तो कहते हैं
9: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा।
7: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो।
10: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
11: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: Mirchi Helpline?
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
1: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
2: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 5 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
4: Time check in association with Naseem Medical Center, Qatar's largest private medical

सोचो कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, कुछ बच्चे पूरा दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, कुछ गेमिंग में बिजी रहते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी समर वेकेशन को ना एक नई डायरेक्शन देने का फैसला किया है। क्योंकि वो पहुंचे हैं PHCC के हेल्थ केयर, क्योंकि वो पहुंचे हैं PHCC के केयर समर प्रोग्राम में। कतर के 6 ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं जहां पे ये प्रोग्राम चल रहा है, और ये समर एक्टिविटी ही नहीं बल्कि फ्यूचर की ना एक खूबसूरत शुरुआत कह लो हो रही है। और खास बात ये है कि इसमें मेल स्टूडेंट्स के लिए ना 3 डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स भी तैयार किए गए हैं, जहाँ पे ये स्टूडेंट सिर्फ बुक्स से नहीं बल्कि रियल हेल्थ एनवायरनमेंट से सीखेंगे कि किस तरीके से उन सिचुएशंस को डील करना है। यहाँ स्टूडेंट सिर्फ बुक्स से ही नहीं सीखते हैं बल्कि ये एक रियल हेल्थ एनवायरनमेंट में सीखते हैं और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ काम देखते हैं। देखिए क्या ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, क्या ही बढ़िया एक्सपोजर है इन बच्चों के लिए। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है ना कि समर ना सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता है बल्कि अपने कोई भी एक ऐसा स्किल है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसके लिए होता है, अपनी एबिलिटीज को पहचानने के लिए होता है, अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले जाने के लिए होता है। और शायद इसी तरह ना आज का एक क्यूरियस स्टूडेंट कल का एक सक्सेसफुल डॉक्टर, नर्स या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन सकता है। कि जब एक समर वेकेशन सिर्फ हॉलीडेज ना होकर लर्निंग का सफर बन जाए तो भाई स्टूडेंट्स की तो भाई बल्ले ही बल्ले है ना भाई। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.8।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Milchi, burga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks to Poto.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, I'm so sorry, पूरा बता रही
1: हूँ. क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: मैं पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष.
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
6: 89.6
0: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: अपनी एक फ्रेंड से पूछा कि यार इतना यंग रहने के लिए तू क्या करती है,
1: तो बोले अरे यार तुझे इतना नहीं पता, एग्जॉसम के इंजेक्शन आते हैं ना, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास होते हैं, वो लगाती हूँ और मैं यंग दिखती हूँ और एंटी एजिंग से बिल्कुल दूर रहती हूँ।
0: लेकिन अगर आप कतर में रह रहे हैं तो कतर मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक्सोजम प्रोडक्ट्स को इंजेक्शन के जरिए इस्तेमाल करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध मतलब बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, जो मर्जी कह लो लेकिन बंद कर दिया गया है। तो अगर आपके चाहने वाले या कोई भी कॉस्मेटिक कोई सर्जरी कराने के लिए या कुछ एंटी एजिंग के लिए ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं या सोच रहे हैं तो उनको ये नॉलेज जरूर दीजिए कि अगर आपका ट्रीटमेंट एक्सोजम इंजेक्शन के साथ हो रहा है तो वो टोटली बैन है। तो अगर यंग रहना है तो हंसते रहिए, क्योंकि हंसना ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप यंग फील करेंगे, यंग रहेंगे और हमेशा लोगों की जिंदगी में खुशियां बांटेंगे। और आपने क्या करना है, मुझे सुनना है, यानी मेरी शीशा को सुनते रहिए, इससे भी आप यंग दिखेंगे। जी हाँ, मेरी शीशा को सुनिए शाम शानदार में और स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
6: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
5: योर स्पेशल ऑफर?
6: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
5: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
6: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
5: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: एक कंट्री रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाता है? ताकि आप लोग सेफ रहें। ऐसे ही द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने अनाउंस किए हैं कुछ लॉज ऑन द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ताकि पता लगे कि किस यूज के लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड क्या क्या लॉज हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें डिटेल में यही बता सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन अथॉरिटी कि आपके पास एक लीगल फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को यूज़ करना है अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए। तो आपको ये बताना ज़रूरी है वॉट इज़ योर फ्रेमवर्क, वॉट इज़ योर लीगल थिंग एंड एवरी थिंग यू हैव टू टेल टू द अथॉरिटीज़। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी द QCAA रेगुलेट करेगा आपके अनमैन्ड एयर क्राफ्ट को एंड इन कोऑर्डिनेशन विद द रेलिवेंट अथॉरिटीज इवन जो नेशनल लॉज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही आपको परमिशन दी जाएगी। एंड ये सारी चीज़ें क्यों करी जा रही हैं? टू इंश्योर द सिक्योरिटी द सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ कतर एंड ऑल्सो द सेफ्टी ऑफ एयर नेविगेशन एंड प्रोटेक्टिंग द स्टेट्स एयर स्पेस। तो ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं। अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, एरियल कोई एयरक्राफ्ट है जो आप यूज़ कर रहे हैं अपनी बिजनेस पर्पस के लिए, तो प्लीज़ रूल्स को फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम कीजिए, लॉज को फॉलो कीजिए एंड ऑफ कोर्स दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हिच व्हेन यू लिव इन अ कंट्री यू नीड टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101.3।
1: शाम शानदार, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आमिर खान, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। किरण राव के बारे में कोई ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
3: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी। करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
4: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था। बहुत मजा आता था, मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
2: और किरण जी, अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना, हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
6: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
5: अभी कॉल करें 3100-0813।
7: Our business is our business, none of your business.
8: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
5: Qatar का number one radio station.
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। कर लेते हैं बात पैसों की। तो आज एक कतरी रियाल इंडियन रुपीज इज 26.43 एंड एक कतरी रियाल इंटू लंकन रुपीज इज 92.20। एक कतरी रियाल इंटू बांग्लादेशी टका इज 33.95 एंड एक कतरी रियाल टू नेपाली रुपीज इज 42.27 एंड बात कर ले कतरी रियाल टू पाकिस्तानी रुपीज इज 76.32। ये था हाल पैसों का। घर भेजिए पैसे और ढेरों सारी खुशियां भी।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: मेरी पार्किंग में मेरा पड़ोसी गाड़ी पार्क कर देता है, क्या करूं?
1: व्हाट क्या करूं? इट्स सिंपल ब्रो, थैंक यू बोल उसको, थैंक यू। फ्री वैलेट सर्विस दे रहा है यार वो।
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम शाम के 6 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का। इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

0: लगा।
1: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
2: एक बार एक टीचर ने क्लास में एक ग्लास उठाया और पूछा, इसका वेट कितना होगा? स्टूडेंट्स ने अलग अलग आंसर दिए। टीचर बोली कि भाई वेट इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसे कितनी देर तक पकड़ा जाएगा। एक मिनट पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, एक घंटा पकड़ोगे तो हाथ दुखने लग जाएगा, और अगर पूरा दिन पकड़ोगे ना तो सुन्न हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ना स्ट्रेस और प्रॉब्लम भी आपकी जिंदगी में यही काम करते हैं। अगर उनको आप हर वक्त पकड़ के रखोगे ना तो वो आपको ही थका देंगे। और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, कैरी मत करो, कभी कभी उन्हें रख देना ही जरूरी होता है। तो बस इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ ऑयल से। ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: कच्चा? अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
6: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
7: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
8: हिट गाने
9: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
10: 89.6
11: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।

क्या आप जानते हैं द ओडिसी ने इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है? सिर्फ 34 आईमैक्स स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद भी फिल्म ने पहले 4 दिनों में 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कलेक्शन कर ली है। इसी के साथ ओडिसी बन गई है इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग आईमैक्स ओपनर। मतलब जब कंटेंट दमदार हो और आईमैक्स का एक्सपीरियंस जबरदस्त हो तो ऑडियंस भी ना फुल सपोर्ट दिखाती है। तो देखिएगा जरूर और मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर बताइएगा जो है मिर्ची ईशा के नाम से। एंड ऑल्सो आप मिर्ची वन खतर पे भी बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hello everyone, my name is Mr. Bean, and meet my friend, Mr. Beer.
1: इस कैरेक्टर को तो आप अच्छे से जानते होंगे, बचपन से लेके बड़े होते तक हम ये देखते ही आए हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर बीन की। अगर आप भी मिस्टर बीन के फैन हैं मेरी तरह, तो आप जा सकते हैं DECC जहाँ हो रहा है टॉय फेस्टिवल, जहाँ मिस्टर बीन का मैस्कट भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने को मिलेंगी। भाई देर किस चीज की है, एंट्री भी सिर्फ 50 रियाल है। अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते भी जा सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई तक है। तो टेंशन नॉट, आराम से जाइए, बच्चों को साथ लेके जाइए, क्योंकि उनको मजा आने वाला है। समर वेकेशन और मजेदार हो जाएगा अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे टॉय फेस्टिवल। इट्स ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेजर जब भी आप टॉय फेस्टिवल जाते हो, एंड मैं हमेशा चाहती हूँ बीइंग एन अडल्ट एज वेल, वहां पे आपको मिलेंगी बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए। तो भाई तैयार हो जाइए, जाइए एंजॉय करिए बच्चों के साथ, बच्चा बन जाइए, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। अर्ज किया है
5: इरशाद, इरशाद

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट। क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: कभी कभी जिंदगी ना एक पल में सब कुछ बदल देती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला ना जिंदगी बदल देने वाला जापान में, जहाँ पे एक लड़का जो 29 साल का था, 29 इयर्स का लड़का 12th फ्लोर से नीचे गिरा और बदकिस्मती से रोड पर चल रही एक लड़की, जवान लड़की 20 साल की, उसके ऊपर गिर गया। और बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि जब उस औरत को हॉस्पिटलाइज किया गया वो वहाँ मर गई, और वो जो लड़का जो 12th फ्लोर से नीचे गिरा था वो बिल्कुल सही सलामत है। कभी कभी किस्मत के फैसले ना बहुत अजीब होते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है कि ये क्या हो गया। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। एक पल पहले सब नॉर्मल था और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। स्टे ग्रेटफुल, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिशिवान इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Emergency Helpline?
1: या मिर्ची हेल्पलाइन बताओ क्या प्रॉब्लम है हु?
0: सबको 6 फुट हाइट वाले लड़के चाहिए, व्हाट अबाउट मी?
1: अरे भाई तुझे क्या चाहिए मुझे कैसे पता चलेगा हु? हु? तो खुद डिसाइड कर।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
3: मिर्ची स्टूडियो क्लॉक का टाइम 7:00 और आप सुन रहे हैं ईशा के साथ शाम शानदार।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट

शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

क्या आप जानते हैं कि कतर का पासपोर्ट पूरे गल्फ में सेकंड नंबर पे आता है? और अगर वो सेकंड नंबर पे आता है तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि 112 कंट्रीज में से कोई भी कंट्रीज ये जाएंगे तो वहां पे वीजा फ्री एंट्री और वीजा ऑन अराइवल मिलेगा इनको। और जो रेजिडेंट जिनको 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनके लिए भी कुछ 10-12 कंट्रीज इधर उधर से निकाल के कर देते कि वीजा ऑन अराइवल और फ्री वीजा वाली फैसिलिटी इनको भी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। बाकी ऐसे ही मजेदार बातों के साथ जारी रहेगा। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड सॉल्ट।

0: शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center.
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा.
2: हेलो.
3: और ये बहुत ही खूबसूरती के साथ बोल दिया हेलो. और ये बहुत ही खूबसूरती के अंदाज में पूछ रहे हैं मुझसे who's this.
2: कौन बोल रहा है
3: ये? और ये मुझसे पूछा जा रहा है साफ तरीके से कि कौन है ये?
2: क्या मजाक चल रही है?
3: क्या मजाक चल रहा है? सर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं 25 साल कोवेंट्री की नौकरी कर चुका हूँ और मैं ऐसे ही बोलता हूँ. सर क्या हाल चाल है आपके? सर हम जिससे भी बात करते हैं इस तरह बात करते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक प्राइज जीत सकते हैं. सर कैसे हैं आप? खूबसूरती के साथ इस बात का जवाब दिया. सर आइए इनाम बहुत ही खूबसूरती के साथ जाता हुआ सीधा आपके पास पहुंचा और आप इनाम के बतौर बन गए.
4: मिर्ची मुर्गा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ भाई कि आप भी कॉमेंट्री करते थे क्या पहले? सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप कुछ दिन पहले रिपब्लिक ऑफ चिकन गए थे मुर्गा खाने? वहाँ पे ज्योति ने मुझे आपका नंबर दिया और उन्होंने नॉमिनेट किया आपको मुर्गा बनाने के लिए और आप बड़े. और सर मेरे साथ अब बहुत ही खूबसूरती के साथ आप बोलेंगे कुकड़ू कू.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची. It's hot.
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
8: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

कभी कभी कुछ अल्फाज दिल से निकल कर इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर आप भी लेट फादर एमिर को अपनी श्रद्धांजलि और दिल की बात लिखकर याद करना चाहते हैं, तो कंडोलेंस बुक्स कतर की म्यूजियम्स जैसे कि नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर और म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में रखी गई हैं। आप वहां जाकर अपने एहसास और दुआओं को अपने लफ्जों में हमेशा के लिए दर्ज कर सकते हैं। Stay tuned with me only on 89.6 Mirchi One. It's hot.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: IP payments ka wah tarika. With IP, send money starting from just QAR 5 and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IP app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IP, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
2: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए
3: तो मिर्ची सुनो ना जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा
4: खूब मिलेगा खूब मिलेगा
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: फतेह। ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को गाया गया है बाय श्रिया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी संजू। लेकिन ये गाना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं कतर में अपना लाइसेंस का एग्जाम देने जा रही थी तो थ्रू आउट दैट जर्नी जब तक मैं लाइसेंस के टेस्ट के लिए बैठी नहीं तब तक मैं ये गाना सुनती रही और सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी। एंड आई वाज डैम श्योर और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया। बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज़ पॉजिटिव होती है। एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज़ फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय करेहसान लॉय एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी ये, बहुत खूबसूरत मूवी। और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन। तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ। ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कटर अकाउंट पे बताइएगा या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: जिनेलिया एंड रितेश, आप दोनों का तो झगड़ा होता ही नहीं होगा। जब झगड़ा ही नहीं होता रितेश देशमुख, आपको तो सॉरी बोलना ही नहीं पड़ता होगा।
3: सॉरी बोलना पड़ता है बिना झगड़ा किए?
4: अलार्म लगा है। ओह गॉड, हेलो जिनेलिया, सॉरी यार, टाइम हो गया, सॉरी।
3: नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि सॉरी बोलने का रोज एक टाइम होता है।
2: इन दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। ये थे रितेश एंड जिनेलिया देशमुख ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन।

सो गाइस अब वक्त आ गया है आज के शो को रैप अप करने का। आप सबके साथ ना वक्त बिताना हमेशा ही बहुत स्पेशल होता है। याद रखिए लाइफ में ना छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना मत भूलना। एक स्माइल किसी का भी दिन बदल सकती है। तो अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। कल मिलूंगी फिर यहीं पे आप ही के साथ बातें करते हुए, गाने सुनाते हुए, आपको वीकेंड के बारे में बताते हुए कल मिलूंगी। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज मी मिर्ची ईशा साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, शुभ खैर, शुभ रात्रि। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: मुझे पता नहीं आपको कैसा फील होता है, लेकिन मैं जब भी कोई अच्छे शब्द या अच्छी धुन सुनती हूँ ना, मेरे को बहुत तेज गूज बम्स होती हैं। और स्पेशली ऐसे अगर मैं लिरिक्स सुनती हूँ कोई, तो मुझे लगता है कि उन लिरिसिस्ट के मैं हाथ पकड़ूँ और उनको बोलूँ कि प्लीज बस आप मुझे टच कर दो एक बार, जिससे यू नो मुझे में थोड़े से अंश आ जाए आपके अंदर के।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ, ओनियन मिर्ची। अभी आपने गाना सुना सफर, ठीक है? सबको बताया जब हैरी मेट सेजल का ये गाना है। क्या आपने इनके बीच में, इस पूरे गाने के बीच में एक लाइन सुनी है? जब से गांव से मैं शहर हुआ, इतना कड़वा हो गया कि जहर हुआ। आर यू इवन अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ दिस लाइन? मतलब यार कैसे कैसे कर लेते हैं लोग दीज थॉट्स। आई थिंक हम सभी एसोसिएट करते हैं इन थॉट्स के साथ, लेकिन इनको ऐसे लिखना और फिर इनको ऐसे म्यूजिक में पिरोना और फिर ऐसे गाने की तरह हमारे सामने लाना, यार काश ये पूरी दुनिया इतनी खूबसूरत सच में होती ऑलवेज। वेल, मिर्ची कैफे चल रहा है यहाँ पर और अगला गाना मैं अपने टाइम मशीन में से आपके लिए लेकर आई हूँ। दिस गाना इज फ्रॉम द ईयर 2002। लेट मी टेल यू, हम लिरिक्स की बात कर रहे थे, इसके लिरिक्स उन्हीं ने लिखे हैं जिन्होंने ये गाया है। आई एम श्योर काफी लोगों को नहीं पता होगा कि शान, हमारे क्यूट सिंगर शान, वो लिखते भी थे। शान और राम संपत दोनों ने मिलकर लिखा था एक्चुअली तन्हा दिल। MTV एशिया अवार्ड फॉर फेवरेट आर्टिस्ट इंडिया इनको ये भी मिला था इस गाने को। और जब ये गाना आया था ना, आई डोंट नो 2002 वाले कितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं जिन्होंने ये गाना एज अ वीडियो सारे पॉपुलर टीवी चैनल्स पे देखा था। रेडियो पे हम कब से सुनते आ रहे हैं, बट दिस हैज दैट फ्रेश एवरग्रीन ब्यूटी जो जब भी आप सुनोगे फील होगी। इस गाने को सुनो यहाँ पर, लौटती हूँ एक ब्रेक के बाद। द सॉन्ग इज कॉल्ड तन्हा दिल। आप सुन रहे हो मिर्ची कैफे, ओनली ऑन मिर्ची मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: होना चाहिए। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: सिर्फ कभी कभी मुझे लगता है कि काश हमें पता होता कि जाने अब क्या होने को है, और दूसरी ही तरफ दिस इज द ब्यूटी कि लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता हमें।
1: मिर्ची कैफे,
0: आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। अभी आपने सुना गाना हल्के हल्के नीरज श्रीधर के आवाज में, 2007 की ये फिल्म हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, याद आई आपको? क्यूट स्टोरी इज इट हैड, यू नो, जावेद अख्तर साहब ने इसके लिरिक्स लिखे हैं। और आज यू नो हम बात ही कर रहे हैं लिरिक्स के, कैसे शान ने राम संपत के साथ को राइट किया था तन्हा दिल, और कितने अलग अलग लिरिसिस्ट होते हैं जो अमेजिंग चीजें ऐसे पेन डाउन कर देते हैं और हमें दिल खुश हो जाता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग मुझे वो लोग लगते हैं जो एक कॉम्बिनेशन में आते हैं, मतलब वो खुद ही गाने लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, कंपोज भी कर रहे हैं। सो जैसे कि शान ने गाया था तन्हा दिल और उन्होंने लिखा भी था राम संपत के साथ, और इसी सिलसिले में मिलवाती हूँ अपने स्पेशल गेस्ट से। सुनिए कौन है मेरे साथ।
2: हाय गाइस, मैं हूँ आपका अखिल सचदेवा और आप सुन रहे हैं मुझे पारुल के साथ मिर्ची कैफे पर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स ऑन।
0: सो गाइस, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अखिल सचदेवा, जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, लिखे भी हैं और कंपोज भी किए हैं। बहुत सारी बातें अखिल से हम यहाँ पर करेंगे टू बिगिन विद। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, दिस इज अ अमेजिंग मिक्स ऑफ सिंगर राइटर कंपोजर, तो क्या चीज पहले आती है, शब्द या धुन?
3: बहुत कम होता है कि मैं अपना कोई थॉट प्रोसेस देता हूँ कि मैं इस चीज पे लिखना है या इस सिचुएशन में लिखना है, वो सब। बट इंडिपेंडेंट जब भी मैंने गाने लिखे हैं, कंपोज करे हैं और जो मैं अब कर रहा हूँ, पहले हमेशा धुन आती है। मोस्टली ऐसा होता है, जो भी मेरे अच्छे गाने हैं वो सबसे पहली धुन जो निकलती है अंदर से वही रहती है। कभी कभी धुन के साथ कोई शब्द आ जाता है, कोई फ्रेजिंग आ जाता है, नहीं तो आई ट्राई टू राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, क्योंकि मैं उस जोन में रहता हूँ।
0: बेसिकली दिल्ली का लड़का है ये एक, और जब तक मैं अभी इनसे नहीं मिली थी, मेरा बिल्कुल अलग पर्सोना था मेरे दिमाग में आपका।
3: क्या पर्सोना था आपके दिमाग में?
0: थोड़े खामोश से, शांत से, सुकून वाले इंसान, वो वैसे भी होंगे आप।
3: ये तो शायद मैं आपको बता दूं, ये मेरी टीम के कुछ, इन्होंने कुछ मेरे को बोला, थोड़ा सा आप जॉली मूड में भी कभी-कभी आ सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं, तो ना फिर मैं वो भी।
0: सो हाउ टुडे आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेंट गाय सिटिंग हियर, जो मेरे को लग नहीं रहा है,
3: इट वाज एन अटेम्प्ट, बट वो अच्छा है, वाइब, दैट्स आल्सो माय ओन वाइब,
0: ऑफ कोर्स आई
3: एम एंजॉयिंग इट,
0: नाइस,
3: आई एम ग्लैड यू आर एंजॉयिंग इट,
0: इट्स देयर। ग्रेट, तो ये तो आपने सुना कि कैसे गाने बनाते हैं, अभी मैं इनसे गाने भी गवाऊंगी और इनके साथ एक गेम भी खेलूंगी। अभी आप सुनिए ये अगला गाना अखिल सचदेवा की ही आवाज में, फ्रॉम द फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया। आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक, सुनो इसको, अभी आती हूँ वापस। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार ये भी अपनी तरीके की प्यारी सी फिल्म थी, मोहनजोदड़ो। आई एम श्योर यू हैव ओपिनियंस ऑन दिस, बट मुझे बहुत पसंद आई थी यार। ए आर रहमान, सना मोहिद्दीन की आवाज में अभी आपने सुना तू है फ्रॉम द फिल्म मोहनजोदड़ो।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अखिल सचदेवा, जिनका हमने अभी थोड़ी देर पहले गाना भी सुना हमसफर, और मैंने आपको बताया कि कैसे वो खुद लिखते हैं, खुद कंपोज करते हैं और खुद गाते हैं। इतना टैलेंट एक इंसान में कूट कूट के जो भरा होता है भाई, गजब लगता है मुझे। वेल, अखिल सचदेवा के साथ एक गेम खेलने वाले हैं हम। आर यू रेडी? एक गेम खेलते हैं जहां पर मैं आपको एक लाइन गाऊंगी और आपको जस्ट उसके बाद की लाइन।
2: मैं भी फिर आरजे बन जाऊंगा, आप देख लो।
0: प्लीज प्लीज बनो, आप बन ही रहे हो यार, आप इतना अच्छा बात कर रहे हो। टॉकिंग सो नाइसली, आप बन चुके हो आज। ठीक है,
2: गानों की है,
0: याद रहती है गानों की लाइन?
2: नहीं यार, वैसे सच्ची मुझे अपने गानों को, मुझे मैं आल बी बैड एट इट, पर ट्राई करते हैं।
0: कोशिश करती हूं कि आपके गाने हो।
2: नहीं, अब आप कोशिश अपनी पूरी करो जैसा आपने करनी है।

0: क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे।
1: सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे, हाय दिल से निकल के आहें लफ्जों पे आने लगे। कैसे

नाइस। तो हमने सुनी अखिल सचदेवा की अमेजिंग आवाज और उनकी बातचीत। आप सुन रहे हैं मिर्ची कैफे बिरयानी पार्लर के साथ, और अगला गाना जो मैं आपको सुनाऊंगी वो यही है जो अभी इन्होंने मेरे साथ यहाँ पे गाया। सुनो इस गाने को और सुनते रहो मिर्ची कैफे बिरयानी पार्लर के साथ। स्टे ट्यून्ड विद थॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्रियंका चोपड़ा, आपने विशाल भारद्वाज के साथ दो फिल्में की हैं, देयर इज सात खून माफ, देयर इज कमीने। आप दोनों की जुगलबंदी को देख के लगता है कि बहुत मजे आते होंगे सेट पे।
2: हाँ, लगता ही है। ही इज द काइंड ऑफ डायरेक्टर, एज एन एक्टर यू हैव टू रियली ट्रस्ट हिम, क्योंकि ही इज हिज आइडियाज कम फ्रॉम where you'll never understand. And if you start justifying it, जैसे अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, जैसे कि you know, तुम यहाँ पे सीढ़ियों से आ रही हो, अगर मैं सोचने लगी कि मैं सीढ़ियों से क्यों आऊंगी, तो फिर तो मतलब आपकी कभी नहीं बनेगी. But you have to trust him.
1: ये थी प्रियंका चोपड़ा talking about विशाल भारद्वाज on मिर्ची It's Hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood Bollywood Bollywood Boldal. Only on मिर्ची It's Hot.

ब्यूटीफुल ट्रैक आपने सुना मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ। कहना ही क्या, केएस चित्रा, एआर रहमान, द फिल्म बॉम्बे और वो वक्त। उठा उठा के मैं आपके लिए जो एक एक चुन चुन के लिए गाना लाती हूँ, आई एम श्योर, आई होप कि आपको ये सारे गाने पसंद आते होंगे। मिर्ची कैफे। तो अब जो ये सिलसिला आ गया है, ये आ गया है अभी फिलहाल आपसे अलविदा कहने का, बिकॉज अगले एपिसोड की तैयारी भी तो करनी है यार, और आपको मुझे ये भी तो बताना है कि आपको अगले एपिसोड में कौन सा गाना सुनना है। आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये शो कैसा लगता है, आपको मेरी आवाज कैसी लगती है, आपको कुछ सजेशन देना है मुझे, आपको कोई गाना बताना है कि प्लीज ये मेरे लिए चला दो। Definitely I'll respond to all your queries. Number note करो मेरा, WhatsApp number है 7045983983। और अगर वैसे ही अपना दिल का हाल बयां करना चाहते हो तो Instagram पे भी कनेक्ट कर सकते हो। Mindless scrolling तो करते ही रहते हो, कुछ बात ही कर लो यार मुझसे। Paruls.word नाम से मुझे ढूंढिए Instagram पे, और चलिए कनेक्ट करते हैं यार। और अगले एपिसोड में मिलते हैं बहुत जल्द। एंड बिफोर आई लीव, आई वॉन्ट लीव यू विद अ फूड फॉर थॉट्स। क्या आपको कभी कभी ऐसा लगा है कि आप किसी लग्जरी ट्रैप में फंस गए हैं, जिसको कि हम हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। आपको पता है, जब हमें किसी कंफर्ट की आदत पड़ जाती है ना, तो हमारा दिमाग उसको बेसलाइन मान लेता है, और फिर उससे थोड़ा सा भी अगर नीचे इधर उधर हो जाते हैं तो हमें तकलीफ होने लगती है, बिकॉज हम यूज्ड टू हो जाते हैं और हमारी जो बर्दाश्त करने की पावर है वो पूरी पूरी खत्म हो जाती है। बट इज दैट द वे टू बी? इस बारे में जरूर सोचना कि कभी आपने ऐसा फील किया है, और मुझे इस बारे में भी जरूर लिखना। अगला गाना मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ टी सीरीज मिक्स टेप से, ये एक अमेजिंग सा गाना है, सुन जरा और तुझे भुला दिया। सुनो इसको, थोड़ा सा मेरा वेट करो, क्योंकि अब मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, एंड रियली रियली ट्राई टू बी हैप्पी एंड लिव एंड लेट लिव। सुनते रहो मिर्ची, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: पुराने गानों में सबसे मासूम सी आवाज पता है किनकी लगती है मुझे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये आवाज मुझे लगती है मुकेश साहब की। और मुकेश साहब कुछ 15-16 साल के रहे होंगे जब फिल्म इंडस्ट्री ने इनका टैलेंट पहचान लिया था। सुनिए एक मीडिया चैनल को दिए एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या स्टोरी शेयर की थी।
1: हम एक मेरी सिस्टर की शादी के अंदर साहब गाना गा रहे थे और उसमें दो साहिबान फिल्म के आए हुए थे, तो शादी की बारात को एंटरटेन करने के लिए लड़की वाले भाई हमेशा करते ही हैं, कोई शराब ला रहा है, कोई कबाब ला रहा है। हमारे सामने कहा भाई हारमोनियम लगाओ भाई, गाना वाना गाएंगे। हमने गाना वाना गा दिया था। वो दो साहिबान अगले दिन मेरे घर पे आए, बस सारी रात गाना बजाना होता रहा। अगले दिन वो सवेरे हमारे वालिद साहब से मिलने चले आए। कहने लगे साहब आपके साहिबजादे में बड़ी टैलेंट है, तो बहुत अच्छा गाना गाना जानते हैं। हमारे फादर को तो पता ही नहीं था गाना किसे कहते हैं, ना हमें पता था, मैट्रिक में पढ़ा करते थे। फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहने क्या कह रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये।
0: इसके आगे क्या हुआ आगे सुनेंगे ना, राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: हेलो हेलो
3: सर वेरी गुड इवनिंग थैंक्स फॉर
2: हाँ बोलिए
3: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
2: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
3: सर आप तो सर पूरा बता
2: क्या करो भैया कहाँ
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
3: आई एम सो सॉरी सर ऐसे कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
3: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
2: पागल
3: आप तो देने पड़ेंगे सर
2: हेलो
3: आप तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
2: कौन बोल रहा है विपिन
3: नहीं सर से बोल अब तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
2: पागल के दिमाग खराब है क्या तेरा पैसे देने पड़ेंगे
3: अब तो फंस गए सर
2: हेलो
4: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया
2: उसके पैसों को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
4: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
4: हाँ जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें
6: हमारी चोरियां चोरों से कम है के
0: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1 It's hot
7: Kabhi kabhi mere dil
0: Mukesh special Charu ke saath purani jeans par only on Mirchi
7: Saavan ka mahina pavan kare so

0: रे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: मुकेश चंद माथुर यानी कि सिंगर मुकेश जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 15-16 साल के थे जब दिल्ली में अपनी बहन की शादी में गाने वाने गा रहे थे, तब दो फिल्मी लोगों ने इनको नोटिस किया। इन फिल्मी लोगों में से एक थे तब के जाने माने एक्टर मोतीलाल जी। ये दो लोग इनके घर पहुंचे इनसे और इनके फादर से मिलने, तो फादर साहब ने बोला, भाई कौन है ये लोग, क्यों आ गए हैं यहाँ पे? ऐसा कुछ शेयर किया था मुकेश जी ने एक मीडिया चैनल से एक बहुत पुराने इंटरव्यू में, तो सुनिए आगे की स्टोरी।
1: फादर बड़े ताज्जुब हो गए, कहले क्या कह रहे हैं, क्या कौन है ये, कौन लोग हैं ये? मैंने कहा जी ये बड़े फिल्म के बहुत बड़े मशहूर आदमी हैं, इन लोगों को मशहूर वशहूर तो होंगे, ये क्या चाहते हैं तुमसे? तो उन्होंने कहा कि जी इन्हें फिल्म में भेज दीजिए, सैगल से भी बड़ा नाम कमाएंगे। तो सैगल ये नाम था जो हमारे फादर ने सुना था, तो किसी को जानते जानते नहीं। तो खैर साहब वो उस वक्त तो उस चीज़ पर जमन नहीं हुए, वो फादर ने कहा कि नहीं भाई हम तो क्लर्क व्लर्क बनवा देंगे अपने लड़के को। तो था वो ऐसा कि नेशनल स्टूडियो के अंदर नलिनी जयवंत को इन्होंने हीरोइन लिया था और उसके लिए एक नए लड़के की तलाश थी उन्हें, और वो चाहते थे कोई सिंगिंग हीरो आए। मगर खैर उस टाइम तो नहीं, नेक्स्ट टाइम जब उसकी सेकंड पिक्चर नलिनी की स्टार्ट हुई जिसका नाम था निर्दोष, दोबारा उन लोगों ने एक टेलीग्राम मुझे दिया मेरे फादर को। मेरे फादर कहने लगे कि भाई अगर इतना वो लोग इसरार कर रहे हैं तो वाकई शायद है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट हो, जाओ अपना मुकद्दर आजमा लो।
0: और इसके बाद साहब बॉम्बे पहुंच गए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
0: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
9: कभी कभी मेरे
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: द आइकॉनिक सिंगर मुकेश जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये 16-17 साल के होंगे 1939-40 में जब बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि दिल्ली में एक शादी में इनके लुक्स और सिंगिंग टैलेंट को नोटिस किया था तब के जाने माने एक्टर मोतीलाल जी ने। खैर ये बॉम्बे आए, एक फिल्म में काम भी किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में एक मीडिया चैनल से उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: खैर साहब हम आए, पिक्चर हो गई फेल, हमें निकाल दिया गया, कंपनी भी बंद हो गई। पहले तो हमने कुछ दिनों कुछ कभी शेयर ब्रोकर बने, कभी वो ड्राई फ्रूट सेलर बने, कभी कुछ बने, सारे दुनिया भर के धंधे करके। वो कहते हैं ना जी कि जब मुकद्दर में कुछ लिखवा के लाए हो तो कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा तरीका निकाल दिया कि प्लेबैक सिंगिंग का प्रोफेशन शुरू हो गया और हमारी कुछ थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई वहाँ पे।
0: वेल, इनसे ये भी पूछा गया कि एक्टिंग में इन्होंने करियर बनाने की कोशिश क्यों नहीं की।
1: मैंने कोशिश करी थी जी, मगर इतना नाकामयाब रहा। दो डिफरेंट आर्ट हैं और मैंने सोचा कि इट इज बेटर टू बी अ फर्स्ट क्लास सिंगर देन टू बी अ सेकंड क्लास एक्टर।
0: क्या ही लाइवली हंसमुख थे यार ये। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: विशाल भारद्वाज, आप फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं, आप म्यूजिक भी देते हैं और आप गाना भी गाते हैं। कई लोग इंडस्ट्री में आपसे काफी खफा होंगे, उनका निवाला जो छीन लेते हैं आप, नहीं?
4: हमेशा एक आयरनी होती है कि शूटिंग से पहले मुझे गाने पूरे करने का टाइम नहीं मिलता है, तो सारे गाने मुझे खुद करके बाद में वॉइसेस चेंज करता हूँ। ऑल द मेंबर ऑफ माय यू नो टीम जैसे कि नहीं ये गाना भी आप गाओ ये गाना भी, बड़ा एम्बेरेसिंग मुझे लगता है। और सिंगर्स थे तो वो सब, जब मैं उनसे पार्टी में मिलता हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि यार ये हद हो गई यार, तुम गाने भी, तुम सारे गाने शुरू कर दिए। और मुझे मालूम है कि पीछे में लगता होगा गाया जाता नहीं है, सांस पूरी आती नहीं है, फिर भी गाने में लगा हुआ है।
3: भाई हम तो कहेंगे थैंक यू उन गानों को बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए और गाना गाने के लिए। दैट वॉज विशाल भारद्वाज ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: दीवाना।
1: सिंगर मुकेश का पहला गाना जो हिट हुआ था वो था 1945 की फिल्म पहली नजर का गाना, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद न कर। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना ऑलमोस्ट फिल्म से निकाला जाने वाला था। इसकी एक स्टोरी एक जाने माने मीडिया चैनल से बहुत पुराने इंटरव्यू में मुकेश जी ने शेयर की थी, सुनिए।
2: जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया तो पिक्चर कंप्लीट होने के बाद ये तय किया गया कि उसमें से ये गाना निकाल दिया जाए। तो हम मजहर खान साहब के पास गए जो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर थे, और हमने उनसे पूछा कि भाई ये गाना इसमें से क्यों निकाल दिया जा रहा है। तो वो कहने लगे, भाई बात ये है कि मोतीलाल जो हैं ये अक्सर चंचल किस्म के करेक्टर करते हैं और इनके करेक्टर को ये सैड सॉन्ग सूट नहीं होता है। हमारा बड़ा दिल टूट गया, हम बड़े उदास हुए। हमने उनसे कहा मजहर भाई कि आप ये गाना रहने दीजिए। कहने भाई ये चलेगा नहीं, ये बड़ा बोर करता है ये गाना और ये पिक्चर के अंदर ड्रैग करता है। तो खैर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद के बाद इस चीज़ के ऊपर वो एग्री किया कि भाई हम एक वीक रखेंगे और अगर पब्लिक को गाना पसंद आया तो इसे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसे पिक्चर में से निकालेंगे।
1: ट्वेल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी सुनते हैं मुकेश जी की आवाज़ में एक और उनका सुपरहिट गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन,
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: यार ये धूप इतनी है कि साइलेंसर से ज्यादा तो सीट गर्म हो जाती है, क्या करूं?
2: अरे गोचू, तो एक काम करना, साइलेंसर पे बैठ के चला जा, सिंपल।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: सिंगर मुकेश जी और उनकी वाइफ सरला की लव स्टोरी। फिर से सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने एक बार एक इंटरव्यू में शेयर की थी, सुनिए।
1: मेरी माँ गुजरात की थी, गुजराती थी, श्रीमाली ब्राह्मण थी और पापा माथुर कायस्थ। उनकी पैदाइश दिल्ली की थी, माँ की बड़ौदा की थी, वडोदरा की थी। मिले दोनों बॉम्बे में। 1946 में उनका प्रेम विवाह हुआ और प्रेम विवाह ऐसा माँ के परिवार ने तो एकदम बिल्कुल ही नहीं स्वीकारा। एक नॉन वेजिटेरियन खाने वाला, फिल्म में गाने वाला, सेटल नहीं हुआ है आदमी, हम ऐसे लड़के को अपनी बेटी दे ही नहीं सकते। मोतीलाल जी एक्टर जो थे, उन्होंने पापा की मदद की और पापा ने भागकर शादी की मेरी माँ से। कन्यादान मोतीलाल जी ने दिया, माँ के परिवार में से कोई मौजूद नहीं था, मगर पापा ने कभी उस बात की गिला या शिकवा नहीं रखा मन में। बहुत एक खूबसूरत प्रेम विवाह रहा उनका।
0: भाई ये तो फिल्मों से भी ज्यादा फिल्मी लव स्टोरी है। और अभी हम सुनेंगे वो गाना जो अक्सर मुकेश जी सरला जी के लिए गाते थे, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात अपने तक ही रखना।
3: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से 1 बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
3: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
3: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
3: जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष।
4: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी और राज कपूर जी की दोस्ती। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बारे में मुकेश जी के बेटे नितिन मुकेश जी ने एक बार एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था, सुनिए।
1: बहुत ज्यादा आत्मीयता, एक दूसरे की कला के लिए इतनी इज्जत और एक दूसरे के लिए अटूट प्यार। राज अंकल ने पापा का साथ कभी नहीं छोड़ा। दोनों की आवाज ऐसी मिलती थी, जब आपस में बात करते थे तो ये नहीं कह सकते थे कि ये राज अंकल बात कर रहे हैं या पापा बात कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज सुनी, कुछ अच्छी चीज की कल्पना की, सीधे मुकेश चंद के पास। और हमारा एक छोटा सा दो कमरे का घर था, उसमें एकदम बड़ी सी हवाई जहाज जैसी इम्पाला चली आती थी उनकी। सारे मोहल्ले में ये हो जाता था कि राज कपूर आए, राज कपूर आए। मगर उन्हें बिल्कुल भी सादगी से वो चले आते थे जमीन पे गद्दे आकर। ओकेशन मुझे ये धुन ऐसी अच्छी लगी है, तो सबसे पहले वो दौड़े हुए पापा के पास आते थे।
0: वाओ, वेल नो डाउट, जब मुकेश जी गए तो राज कपूर जी ने कहा कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कभी कभी मेरे दिल
0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी के गाने सुनो तो ऐसा लगता है कि बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। बिल्कुल ऐसा ही शेयर किया था एक इंटरव्यू में उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने, सुनिए।
1: वो इतने नरम दिल के इंसान थे, इतने भावुक थे, इतने कंपैशनेट थे। मैं कॉलेज में जब आया तो मैं देखता था कि मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ियां थी, तो मैंने एक दिन मेरी माँ से फरमाइश की मुझे भी गाड़ी चाहिए। माँ ने पापा से कहा, सुनिए नितिन बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा है, उसको गाड़ी की जरूरत है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, करके गाड़ी की चाबी दी। और मैं बेफिक्री से और बेख्याली से कि गाड़ी तो एक ही है, मगर मैं काफी दिनों तक गाड़ी में घूमता रहा, दोस्तों को घुमाता रहा। एक दिन मैं अपने घर से निकला तो मैंने देखा कि बस स्टॉप पे पापा खड़े थे। उस दिन मैं वापस घर आया, माफ कीजिए मुझे, आज भी मैं वो बात याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। तो मैंने पापा से पूछा कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। मुझे हंसकर प्यार से बोले, पागल गाड़ी मैं चलाऊं या तू चलाए, एक ही बात है।
0: ओह दैट इज सो अडोरेबल। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आमिर खान आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, किरण राव के बारे में कोई एक ऐसी चीज बताइए जो हमें नहीं पता।
4: किरण जो है अपना करियर जो एक तरह से कह सकते हैं बिगेन एज रेडियो जॉकी, करीबन 1.5 साल तक उन्होंने शो संभाला।
5: बहुत साल पहले जब FM शुरू ही हुआ था हमें एक बहुत लेट नाइट शो दिया गया था, विकेड आवर था, बहुत मजा आता था। मैं खुद जो मुझे चाहिए था मैं बजाती थी और मजा करती थी स्टूडियो में।
3: और किरण जी अगर आज हमने ऐसा कर लिया ना हमारी तो जॉब गई हाथ से। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: 89.6 मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: मुकेश जी के उनके कंटेम्पररी सिंगर्स मोहम्मद रफी जी, किशोर कुमार जी, लता जी, उनके साथ किस तरह के रिलेशनशिप थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उनके बेटे नितिन मुकेश जी ने क्या शेयर किया था।
1: मैं ताज्जुब करता था जब मुकेश जी फोन उठाकर रफी साहब को कहते, रफी मियाँ तुमने ये गीत इतना खूबसूरत गाया है, काश मैं ये गीत तुम्हारी तरह गा सकता, काश मुझे ऐसा गीत मिलता। रफी साहब का फोन आ रहा है, मन्ना दा का फोन आ रहा है, मुकेश तुमने कितना खूबसूरत ये गीत गाया है। आपस में एक दूसरे के लिए इज्जत, ये भावना नहीं थी राइवलरी की, ये था कि देखो उसने इतना अच्छा गाया है, मैं क्यों ना उस जैसा गाऊं। मैं पापा के संग स्टेज पे गाता था तो हमेशा मुझे कहते थे, बेटा मेरे खुद के गीत गाने के लिए तो मैं खुद हूँ ही, तू रफी साहब के गाने गा, रफी साहब का ये गीत कितना खूबसूरत है, कितना लोकप्रिय है, तू किशोर दा का ये गाना गा। मुकेश जी रफी साहब को, किशोर दा को, महेंद्र कपूर साहब को, मन्ना दा को, और सबसे ज्यादा किसी को चाहते थे तो लता जी को।
0: वाओ, तो इसी जोड़ी का ये ब्यूटीफुल सुपरहिट गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: भाई अक्सर सिंगर से पूछा जाए कि उनका फेवरेट गाना कौन सा है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन मुकेश जी ऐसा नहीं करते थे, वो बहुत क्लियर थे। एक बार उनसे एक पुराने इंटरव्यू में, एक मीडिया चैनल के एक इंटरव्यू में, उनसे जब कहा गया कि उनके पॉपुलर गानों में से उनका फेवरेट गाना सुनाए, तो सुनिए।
1: पॉपुलर वॉपुलर तो नहीं जी, मैं आपको एक अच्छा गाना जो मुझे मेरे दिल को पसंद है वो मैं आपको सुना देता हूँ। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए।
0: और आपके लिए फिलहाल ये गाना, जिसके लिए मुकेश जी को नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम रजनीकांत था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची।

0: वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर्स मुकेश जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कई बार जब वो गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, क्या उनको ऐसा लग जाता है कि ये गाना अच्छा नहीं है या हिट नहीं होगा। क्या उनको ऐसी लिबर्टीज मिलती थी पहले के जमाने में कि वो गाने में कुछ चेंजेस फेर बदल कर पाए। सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: फेर बदल तो हम नहीं कर पाते जी, क्योंकि वो तो एक म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है और उनकी बंदिश होती है। मगर हाँ, कुछ थोड़ा सा एक इंट्यूशन जरूर हो जाती है कि ये गाना नहीं चलेगा।
0: और गाना पसंद नहीं होता था तो भी गा देते थे।
1: हाँ जी, पेट है।
0: इतने जोवियल, लाइवली, हसमुख मुकेश जी, इनको पर्सनली सैड सॉन्ग्स गाना पसंद था। सुनिए एक बार उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: अगर मुझे 10 लाइट गाने मिले और एक सैड सॉन्ग मिले तो मैं 10 गाने छोड़ के वो गाने के लिए एक सैड सॉन्ग गाने।
0: वेल, यहाँ पे हम वो गाना सुन लेते हैं जो थोड़ा फिलोसॉफिकल, थॉटफुल सा है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, ऑन मिर्ची।
2: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: देश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: भाई फिल्मों में सिचुएशन के हिसाब से गाने लिखे जाना थोड़ा लेट शुरू हुआ था। 1940s या कुछ हद तक अर्ली 50s की भी बात करें तो गाने बस बना दिए जाते थे, रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। वो फिल्म में लिए जाएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। सिंगर्स जब गाने गा रहे होते थे उनको पता भी नहीं होता था किस सिचुएशन के लिए गाना यूज होगा नहीं होगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस बारे में जब आइकॉनिक सिंगर मुकेश जी से पूछा गया था तो सुनिए उनका क्या जवाब था।
1: अक्सर तो ये होता है जी कि ना डायरेक्टर होता जब हमारी रिकॉर्डिंग होती है और ना प्रोड्यूसर होता, और अगर दोनों होते हैं तो उन्हें पता नहीं होती कि सिचुएशन क्या है। मगर खैर कुछ सीरियस फिल्म मेकिंग अब शुरू हो गई है और लोग आते हैं, वो सिचुएशन भी बताते हैं, और जब सिचुएशन बताते हैं तो ज़रूर उसमें कलाकार उस सिचुएशन को सामने रख के उसमें खो के और उसके उसको गाने को उस किस्म से रेंडरिंग करता है।
0: वेल ऑनेस्ट सीधे सादे मासूम से मुकेश जी बिल्कुल अपने गानों के जैसे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची सजन।

0: मुकेश स्पेशल चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: जिनीलिया देशमुख
4: आर यू अ ऑनेस्ट क्रिटिक
5: आई एम एन ऑनेस्ट क्रिटिक बट आई एम आल्सो गुड फॉर योर ईगो
4: अरे क्या बात है मुझे वैलिडेट कर ले यार हेलो जिनीलिया आई एम नॉट फीलिंग ग्रेट क्वीन वेयर इज योर क्राउन
3: शी इज एन ऑनेस्ट क्रिटिक बट अ वेरी फनी पर्सन आल्सो ये थी जिनीलिया देशमुख ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं
7: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
8: 89.6
7: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
8: 89.6 मिर्ची
0: मुकेश के गाने और उनकी बातें चारों के साथ पुरानी जींस पर ओनली ऑन मिर्ची

सिंगर मुकेश जी की जब डेथ हुई 1976 में, तो वो यूएस गए हुए थे एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, उनका वन ऑफ द लास्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग्स उसके बोल क्या थे, वेल उनके एक और शो से, एक और प्रोग्राम से ये गाना जब वो लाइव गा रहे थे उसकी रिकॉर्डिंग सुनते हैं।

ब्यूटिफुल एंड गूज़बम्प्स। तो ये गाना सुन लेते हैं 1975 की धर्म करम मूवी का। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या, क्या, क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है? रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा, कैसा, कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? हाँ, क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सैयद कादरी ने। फिल्म आवारापन 2 से सुनते रहिए वे जुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित भूषण पर प्रधान हो तो काकशेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

89.6 Mirchi 1. It's hot.